नमस्कार मित्रों, मैं हूं मनोज और स्वागत है आपका 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। इस नए वर्ष में एक कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं जिसका शीर्षक है सुनो भाई साधो। इसमें कबीर के दोहों पर व्याख्या की जाएगी। सबसे पहले कबीर की आज के समय में क्या प्रासंगिकता है उसको हम देखेंगे। आज की इस शोर भरी दुनिया में जहाँ हर कोई चिल्ला रहा है पर कोई सुन नहीं रहा, जहाँ धर्म जाति और विचारधाराओं की ऊंची दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, वहाँ एक आवाज़ 500 सालों से गूंज रही है। एक ऐसी आवाज़ जो न डराती हैं न बहलाती हैं बल्कि सीधा आईना दिखाती हैं। वो आवाज़ है काशी के उस फकीर की जिसे दुनिया संत कबीर के नाम से जानती है। दोस्तों, कबीर कोई महलों में रहने वाले दार्शनिक नहीं थे, वे एक जुलाह थे, कपड़ा बुनना उनकी आजीविका थी, लेकिन सत्य को बुनना उनकी साधना। उनका संघर्ष केवल गरीबी से नहीं था बल्कि उस दौर के पाखंड से था। कल्पना कीजिए उस समय की काशी की, जहां एक तरफ पंडितों का वर्चस्व था और दूसरी तरफ मुल्लाओं की सत्ता। कबीर ने इन दोनों के बीच खड़े होकर निडरता से कहा, मसीह कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। यानी उन्होंने कभी कागज कलम छुई नहीं, लेकिन उनकी आंखों ने जो देखा वह कागज की लिखी से कहीं बड़ा था। उन्हें कोड़े मारे गए, उन्हें

शहर से निकालने की कोशिश हुई, लेकिन कबीर का संघर्ष थमा नहीं, क्योंकि उनका संघर्ष किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि इंसानियत के पक्ष में था। अब आप सोचेंगे कि आज 2026 में हम 500 साल पुराने कबीर की बात क्यों कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि जो बीमारियां तब थी वो आज भी हैं, सिर्फ उनके चेहरे बदल गए हैं। नफरत, दिखावा, कट्टरता और अहंकार। कबीर एक सामाजिक डॉक्टर थे। जैसे एक डॉक्टर बीमारी का इलाज करने के लिए खुद बीमार नहीं होता, वैसे ही कबीर समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए उन बुराइयों का हिस्सा नहीं बने। उन्होंने समाज की नब्ज पकड़ी और बताया कि जब तक पवित्रता का चश्मा पहनकर दूसरों को अपवित्र कहते रहेंगे, तब तक हम इंसान नहीं बन पाएंगे। कबीर का एक दोहा हम उदाहरण के लिए देखेंगे।

इस दोहे से हमें ज्ञात करते हैं कि कबीर किस प्रकार की विचारधारा को और समाज को रचने की कोशिश कर रहे थे। इस छोटे से दोहे में कबीर ने जीवन का सबसे बड़ा मैनेजमेंट गुरु मंत्र दिया है। बाजार में खड़ा होना से तात्पर्य है, कबीर कहते हैं कि सत्य की तलाश हिमालय की गुफाओं में नहीं, बल्कि इस दुनिया के बाजार अर्थात भीड़ के बीच में है। हमें भागना नहीं है, इसी दुनिया में रहकर काम करना है। मांगे सबकी खैर का अर्थ है कि कबीर का कोई धर्म नहीं था, इसलिए वे सबकी भलाई मांग सकें। उनका प्रेम पक्षपाती नहीं था, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, यह सबसे क्रांतिकारी बात है। अक्सर दोस्ती हमें सच बोलने से रोकती हैं और दुश्मनी हमें अंधा कर देती हैं। कबीर कहते हैं कि इतना तटस्थ हो जाओ कि सच को सच कह सको, यह वही साधारणीकरण है जिसके बारे में हमारे दार्शनिक बात करते हैं कि अपने स्व के ऊपर उठकर पूरी दुनिया को एक समान देखना चाहिए। कबीर की देन यह है कि उन्होंने हमें स्वतंत्र होकर सोचना सिखाया। उन्होंने हमें सिखाया कि सवाल पूछना ही धर्म है। आज के इस पहले एपिसोड में बस इतना ही। कल हम कबीर के उस क्रांतिकारी विचार पर बात करेंगे जहां वे कहते हैं कि ईश्वर सातवें आसमान पर नहीं, आपके और मेरे भीतर बैठा है। चलते चलते बस इतना ही कहूँगा। आज किसी को धर्म या जाति की नज़र से नहीं, बस इंसान की नज़र से देखिएगा, शायद आपको वहीं कबीर मिल जाएं। सुनते रहिए रेडियो मनभावन 90.8 FM, आपका दोस्त मनोज के साथ। धन्यवाद।

लाख छिहत्तर बा तथागता आर्य अष्टांगिक मार्ग का दूसरा मार्ग तूने दिखा दिया। सम्यक संकल्प, संकल्प यह दृढ़ नैतिक होते हैं, धीरोदात्त होते हैं, उनमें मूलभूत तत्व निहित होता है और सैद्धांतिकी भी। संपूर्ण विश्व का भार इन मूलभूत तत्वों पर अवलंबित होता है। मानवीय संकल्पनाओं की दिशा इन्हीं संकल्पनाओं से आकार धारण कर लेती है। संकल्पनाओं की विचारों का अधिष्ठान होता है, फिर आचरण घटित होता है अपने आप योग्य मार्ग से। संकल्प होता है भले विचारों का, बुरे विचारों को स्थान नहीं मिलता संकल्पना में। इसलिए संकल्पना का विकास यानी गति प्रगति की खोज, संकल्पना की आवश्यकता यानी दृढ़ निश्चय, संकल्पना की यात्रा यानी कार्य पूर्ति की सूचना। संकल्प होता है कसम लेने समान, दृढ़ता पूर्वक कार्य सिद्धि पूर्ति कारण। अच्छी बातों को उजागर करने, समाजाभिमुख निर्णय घोषित करने, ध्येय प्राप्ति की ओर कदम बढ़ाने, सकारात्मक उद्दिष्ट पूर्ण करने, इनके लिए होता है संकल्प। सम्यक संकल्पना का महत्व सम्यक दृष्टि के मनुष्य ने निश्चित करना चाहिए, तब उससे विकसित होगी मानवीय संस्कार और मानव समूह की विवेकनिष्ठ संस्कृति। संकल्प कीजिए आसक्ति और द्वेष त्यागने, प्रतिहिंसा टालने यानी शुद्धत्व को अधिक परिशुद्ध बनाने, नाम रूपों में अंतर्भूत अनात्मा के समक्ष जानिए दुख का अनित्य भाव, तब प्रज्ञा के प्रभाव से निष्क्रमण दृढ़ हो जाएगा। बात तथागता आर्य अष्टांगिक मार्ग का तीसरा मार्ग तूने दिखा दिया। सम्यक वाचा, नीतिमान मनुष्य ने नित्य ही सत्यवद असत्य ना बोले। सत्य बोलने वाला मनुष्य ही संस्कारक्षम और नीति परायण होता है। असत्य बोलने वालों का कभी भी नहीं होता संबंध नैतिक धर्म से। दूसरों के बारे में गलत बोलना यह प्रवृत्ति ठीक नहीं। सम्यक वाचा इस संकल्पना से ही विकास मानवता का हो, इसलिए व्रत पालन जरूरी है कि दूसरों के संबंध में बुराई ना करें तथा न करें निंदा दूसरों की। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, प्रेम जताना सबके प्रति, न गाली गलौज न अनुचित भाषा का प्रयोग। सम्यक वाचा का तत्व सभी ने अपनाना और अपनत्व से अपनों से सौजन्य दिखाना। मनुष्य की अर्थहीन बकवास यह सम्यक वाचा नहीं है, अर्थहीन बकबक मूर्खता है। तब कहना हो अर्थपूर्ण आशय युक्त, शैली अभिव्यक्ति की सामंजस्यपूर्ण हो भूमिका, जिससे मनुष्य के संस्कारों की दृष्टि वृद्धिगत होगी। सम्यक वाचा का अनुपालन करते समय अपने आंतरिक मन में बदलाव अपेक्षित है। किसी के दबाव के कारण न करना अनुपालन सम्यक वाचा का, या किसी के भय के कारण, या किसी पक्षपात से। सम्यक वाचा न होने पर क्या हानि होगी अपनी, या सम्यक वाचा न होने पर क्या लगेगा दूसरों को, या अपनों से वरिष्ठ जनों को। इस प्रकार की भावना यानी सम्यक वाचा से दूर जाना है। वैयक्तिक लाभ अथवा वरिष्ठों की आज्ञा का पालन यह प्रमाण नहीं है सम्यक वाचा का। कोई भी बाह्य अनुभूति, बाह्य परिणाम, बाह्य प्रमाण सम्यक वाचा के लिए नहीं होते उपयुक्त। अभिव्यक्ति का आंतरिक बदलाव, भाषा अभिव्यक्ति का लहजा, सामंजस्यपूर्ण शैली, शब्द उच्चारण का स्तर सम्यक वाचा में समाहित होता है।

नमस्कार, ओम शांति। विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, इसके ऊपर हमारी चर्चा शुरू थी। हमने विश्व के बारे में चिंतन किया, स्वधर्म के बारे में चिंतन किया और पिछले एपिसोड में सूर्य के बारे में भी चिंतन किया। हमने ये देखा कि मावली को सूर्य अभिप्रेत था। यह ग्रह सूर्य जो शब्द का प्रयोग किया है वह सिर्फ लिमिटेड है सूर्य ग्रह के हिसाब से या और कुछ अलग है, इसके ऊपर भी हमने चिंतन किया। अभी हम उसको तीनों को जोड़ेंगे, सूर्य को देखा, स्वधर्म को देखा, विश्व को देखा। अभी विश्व स्वधर्म सूर्य तीनों को अगर जोड़ के देखेंगे तो हमें और उस गहनता तक जाने के लिए मदद मिलेगी। देखिए, सूर्य जो है ग्रहमाले का जो सोलर सिस्टम है उसमें से ग्रह सूर्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज इट गिव्स एनर्जी टू एवरीबॉडी। कंटिन्यूअस एनर्जी उससे मिलती है, उसके सोलर एनर्जी बोलते हैं, और इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं रहता। भले हम सन कहेंगे, सूरज कहेंगे, सूर्य कहेंगे, और कोई भाषा में और कुछ कहेंगे, लेकिन उससे कोई ये मेरा सूरज है, ये आपका सूरज है, ये मेरा सन है, ऐसा कभी डिस्प्यूट सुना है हमने? नहीं है। सूरज जो है उससे एनर्जी हर कोई लेता है एंड एवरीबडी इज हैप्पी। भले किसी से ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं, भारतीय संस्कृति में सूरज को भगवान का रूप दिया गया है और सूरज को इसलिए भगवान मानते हैं। अभी ये सूरज जो है उसे भगवान मानते हैं, लेकिन सचमुच ही भगवान है या भगवान कोई और कोई है? सूरज की उपमा दी है क्योंकि जैसे सूरज सर्व ग्रहों में श्रेष्ठ है वैसे भगवान भी सबसे ऊंचा है, इसलिए ऊपर वाला सर्वशक्तिमान कहते हैं उनसे। और मुझे लगता है मावली ने जो सूर्य का शब्द प्रयोग किया है उसके पीछे यही राज है। उनको सूरज जो अभिप्रेत है, विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, ये सूर्य जो है वो भगवान के बारे में, वो भगवान को देखते हैं और वो अभिप्रेत है उनको। अभी अगर सूर्य सूरज इक्वल टू भगवान और भगवान इक्वल टू सूरज और भगवान का नाम ही सूरज, ऐसे अगर विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो में है तो अभी पूरा का पूरा अर्थ देख लीजिए। विश्व, सारे विश्व में भगवान के अलग अलग रूप है, भगवान की अलग अलग मान्यताएं है, नाम अलग अलग है, पहचान अलग अलग है, और शायद सही पहचान न होने के कारण या अलग अलग पहचान होने के कारण या उसके जो कर्म है वो अलग अलग होने के कारण या उसका जो कार्य है उसका पूरा पूरा ज्ञान न होने के कारण शायद हमारे में लड़ाई है, झगड़ा है। ये हमारा भगवान है, ये आपका भगवान है, और ऐसे नहीं कि सिर्फ चार धर्म जो है मेन मुख्य धर्म जो मानते हैं हम चार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसमें भगवान अलग है, ऐसे नहीं है। अभी हिंदुओं में भी इतने देवताएं हैं, फिर भगवान क्या है, देवता क्या है, ये भी कंफ्यूजन है। और इसलिए सूर्य जो है, सूर्य के बारे में कभी कंफ्यूजन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भगवान के बारे में है। अगर भगवान इक्वल टू सूरज और सूरज इक्वल टू भगवान ये हम सोचते हैं तो विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो। शायद मुझे ऐसे लगता है मावली को ये अभिप्रेत है कि अगर जिस दिन सारा विश्व
अपने स्वधर्म में स्थित, स्वधर्म मीन्स आत्मा का धर्म, शांति का धर्म। आत्मा का धर्म है शांति, पिछले एपिसोड में हमने देखा था। तो आत्मिक स्थिति में सारा विश्व अगर स्थित हो जाता है और सूर्य जो है, भगवान जो है, उनको देखता है, तो भगवान का सही ज्ञान सबको हो जाता है। विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, और ये रिक्वेस्ट या ये विजन एक दिन ऐसे आएगा। माउली को भी लगता है कि सारा विश्व जो है, हम सिर्फ कहते हैं गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ, सत्य, सत्यमेव जयते, भगवान की विजय होगी, अंतिम विजय भगवान की होगी। अगर भगवान सत्य है, गॉड इज ट्रुथ, ये सही है, तो विजय किसकी होगी? अंतिम भगवान की होगी। और यही विजय जो है, और इसलिए देखिए सत्य युग कहा जाता है, भगवान को सत्य कहते हैं और युग को भी सत्य कहते हैं। और पांडव देखिए, पांडव में भले ही उनका जो श्रेष्ठ था, पांडव में बड़ा दादा, उसका नाम था युधिष्ठिर, लेकिन उनको भी कहते हैं धर्मराज। तो ये धर्म हो या सत्य हो या भगवान हो, उनकी विजय होगी, मीन्स जो अच्छाई की बुराई पर विजय होगी। और ये स्वधर्मे, विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, सारा विश्व जो एक मुख से अगर भगवान को पहचान लेगा, ज्ञान भगवान के बारे में मिलेगा, तो क्या होगा? बुराई रहेगी नहीं, कोई लड़ाई नहीं रहेगी, कोई दुराचार नहीं रहेगा, कोई अशांति नहीं रहेगी, और सब अपने शांत स्वभाव में, शांति के धर्म में स्थित हो जाएंगे। तो सबके विचार क्या होंगे? विचार भी एक होंगे, और इसलिए बोलते हैं एक विचार तो एक आचार हो जाएगा, एक उच्चार हो जाएगा, और सब जहां एक होते हैं, यूनिटी। जब यूनिटी हो जाती है, तब हर चीज आसान हो जाती है, और विश्व परिवर्तन जो है वो भी आसान हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा था, माउली का जो पसायदान है, उसमें जो रोड मैप है या रिक्वेस्ट है, तो ये रोड मैप यहां पूरा हो जाता है। सब्जेक्ट टू कंडीशंस क्या क्या है? आता विश्वात्मके देवे, उन्होंने विश्वात्मक देव को बताया, मांगा, येने वाग यज्ञ तोषावे, मेरे वाग यज्ञ जो है उससे आप संतुष्ट हो जाओ, और मुझे पसाय दान दो, मुझे दान दो, मुझे क्या दो? ब्लेसिंग्स दो, मुझे आशीर्वाद दो। आता विश्वात्मके देवे, येने वाग यज्ञ तोषावे, तोषो निमज द्यावे पसाय दाने, जे खळांची व्यंकटी सांडू, तया सत्कर्मी रती वाढू, भूता परस्परे जडो मैत्र जीवांचे। ये भी देखा हमने। फिर दुरितांचे तिमिर जावो, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो। ये जब हो जाएगा, तब स्वर्ग आ जाएगा, सतयुग आ जाएगा। और ये सतयुग कैसा है, उसका वर्णन अगले कड़ी में। तो ये जो ओवी है, विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, उसके ऊपर जब चिंतन करेंगे, तब लगता है, मुझे लगता है कि ये कंडीशन हो जाएगी। विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, सब एक रूप हो जाएंगे, एक मुख से बोलने लगेंगे, तो आगे क्या होगा? जो जे वांछील तो तेला हो प्राणी जात। आजकल हम बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन सब होता नहीं है। हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, क्योंकि शायद ऐसे कहते हैं कि आपकी इच्छा आपको अच्छा नहीं बना देती। और जब मुझे पूरा ज्ञान हो जाता है, परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, तो कोई इच्छा ही नहीं रहती और सब अच्छा हो जाता है। इसलिए जो जे वांछील तो तेला हो प्राणी जात, क्योंकि इच्छा ही अच्छी होगी।
आजकल हमारी इच्छाएं अच्छी होगी उसकी गारंटी नहीं है, इसलिए कभी होती है पूर्ण या कभी नहीं होती है। लेकिन वो स्टेज जो माउली को अभिप्रेत है, जब विश्व स्वधर्म में, सारा विश्व अपने स्वधर्म में स्थित होके सूरज को देखने लगेगा, पहचानने लगेगा, तब जो मन में इच्छा है, जो जे वांछील तो तेला हो प्राणी जात, ये पूर्ण हो जाएगा। और फिर कैसे होगा, ये स्वर्ग का रोड मैप कैसे होगा, स्वर्ग का दर्शन कैसे होगा, वो अगले कड़ी में हम देखेंगे। तो यहां अपनी चर्चा हम पूरी करेंगे, विश्व स्वधर में सूर्य पाहो, और अगले कड़ी में अगले चरण के ऊपर चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम शांति।

नमस्कार, ओम शांति। दुरितांचे तिमी रजावो, विश्वस्व धर्म सूर्य पाहो, जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणीजात। जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणीजात, यहां तक आ गए और हमने ये देखा कि जो जो प्राणी मात्र को ये पृथ्वी पे धरा पे जो कोई प्राणी है, उनके मन में जो कोई आशा है, इच्छा है, ये सफल होने दो, ऐसे माउली ने मांगा। तो अगर हर किसी की इच्छा पूरी हो जाएगी, संभव है? संभव है, क्योंकि वो इच्छा ही अच्छी होगी, बुरी इच्छा होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसके पीछे जाएंगे तो विश्व स्वधर्म में सूर्य पाहो। सारा विश्व अगर एक ही सूरज को देखता है, एक ही भगवान को देखता है और भगवान में स्वधर्म से, आत्मिक स्थिति से देखता है, तो बुरी इच्छा या बुरा विचार, बुरा संकल्प मन में आने की संभावना है ही नहीं। और इसलिए माउली ने कहा, जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणी जात। मेरे बहुत सारे मित्र जो है वो कहते हैं कि ये नव ओवी है, उसमें से तो इतने कम शब्दों में, ज्यादा से ज्यादा 8-9 एपिसोड में उसका पूरा अर्थ पूरा हो जाएगा। ये जो अर्थ निकलता है ये कहां से है? एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि कवि जो रहता है, एक कवि रहता है, उसका काव्य है, उसका जब रसग्रहण होता है तो ऊपर ऊपर से शब्द देखेंगे तो अर्थ अलग रहता है, और जब उसका रसग्रहण करने लगते हैं तो अर्थ अलग निकल जाता है। और इसलिए कहते हैं, जे न देखे रवि ते देखे कवि, और उसके आगे बढ़ के ऐसे ही कहा जाता है, और जो जे न देखे कवि ते देखे अनुभवी। योगीराज थे, माउली योगीराज थे, और उन्होंने कुछ योग साधना करते समय अनुभव किया होगा, कुछ विजन लिया होगा, और ये विजन उन्होंने प्रत्यक्ष किया, और ये विजन लेने के साथ साथ उन्होंने विश्वात्मक देव परमात्मा से प्रार्थना की। इसको डिकोडिंग भी कहा जाता है। देखिए, पहले जमाने में टेलीग्राम रहता था, कट्ट कड़ रहता था ना, उसमें क्या कट्ट कड़ कट्ट करते हैं कुछ पता नहीं चलता था, लेकिन उसका जब वाक्य तैयार हो जाता था, पंक्ति तैयार हो जाती थी, सेंटेंस तैयार हो जाता था, तो मैसेज आता था। बाद में टेलेक्स आ गया। मेरे कई सारे मित्र जो है ओसीएस वीएसएनएल के, वो समझते होंगे कि वो टेलेक्स में कागज की पट्टी रहती थी और उसमें बहुत सारे छिद्र थे, होल्स थे, और होल्स की पोजीशन, नंबर ऑफ परमिटेशंस, कॉम्बिनेशन देखने के बाद वो पढ़ सकते थे कि ये मैसेज क्या है। तो मैसेज है कि नहीं? ऊपर से देखेंगे तो कागज की पट्टी है, लेकिन जब खुल के देखेंगे, सोच के देखेंगे, तब उससे मैसेज निकलता है। वैसे ये पसायदान है माउली का, ऊपर से तो नव ओवी है, और अंदर जाके झांक के देखेंगे तो खजाना है। और ये खजाना खोलने का प्रयास, छोटा सा प्रयास शुरू है, आपकी प्रेरणा से, आपकी प्रेम से। आप बड़े अच्छी तरह से उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और इसलिए मेरा कहना यह है कि ये जो जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणीजात, यहां टर्निंग पॉइंट है। अब तक माउली ने एक्सप्लेन किया, बैकग्राउंड तैयार की, लेकिन जैसे मैंने कहा था, माउली का जो विजन है स्वर्ग का, ये स्वर्ग कैसा है, कैसा आएगा, उसका रोड मैप क्या है, वो अभी आगे के चरणों में अपने को दिखेगा, हम देख सकेंगे उसको। तो ये रोड मैप जो है, स्वर्ग जो है, जैसे पिछले एपिसोड में भी हमने डिस्कस किया था, सचमुच स्वर्ग आएगा
क्वेश्चन मार्क, क्योंकि स्वर्ग क्या है, स्वर्ग है या नहीं है, इसमें ही बड़ा डिस्प्यूट है। लोग बोलते हैं कि स्वर्ग है ही नहीं, क्योंकि स्वर्ग में जो जाता है तो पीछे वापस नहीं आता बोलने के लिए कि स्वर्ग क्या है, ऐसी मान्यताएं हैं। अगर ऐसा है तो यह स्वर्ग की संकल्पना कहां से आई? ये गाने जो लिखे थे चित्रपट में, पिक्चर्स में, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी वसेरा, वो भारत देश मेरा, वो कहां से आया? संकल्पना कहां से आई? ये कवि के मन में जो विचार है वो कहां से आया? स्वर्ग में जो सुख था, आनंद था, वो जो संकल्पना है, आनंद है, सुख है, वो कहां से आई? यही भारतवर्ष है, और इसलिए भारतवर्ष को सोने की नगरी कहते हैं, सोने की चिड़िया कहते हैं। और मजे की बात देखो, है दोनों सोने के, द्वारका भी सोने की है और लंका भी सोने की है, ऐसे मानते हैं। लेकिन लंका जलाते हैं और द्वारका डूब गई, तो यह द्वारका क्या है और लंका क्या है, यह भी देखना है। तो यह स्वर्ग जो रोड मैप है, स्वर्ग में हर कोई सुख और शांति से जीता है। एक ही धर्म है, एक ही भाषा है, और मनुष्य देवता स्वरूप है। इसलिए कहते हैं कि सनातन धर्म कहते हैं सबसे पहला, क्योंकि हिंदू धर्म की स्थापना भी किसने की हमें मालूम नहीं है। शंकराचार्य जी ने उसका पुनरुज्जीवन किया, लेकिन स्थापना किसने की? और उसके पहले सनातन धर्म कहते हैं, और उससे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये देवता जो थे, 33 करोड़ देवता जो है, कौन है? और माउली ने वो देवताओं का ही वर्णन अगले चरणों में किया है। और देवता बनने की पहली स्टेज है एंजेलिक, फरिश्ता। ये जब स्टेज बनेगी तब देवता बन जाएंगे। और इसलिए देखिए, हमारे यहां जो कहावतें हैं, वाक् प्रचार है, उसके पीछे कुछ ना कुछ सत्य है। ऐसे नहीं वाक् प्रचार आते हैं, इसलिए हम कहते हैं देवताएं वाम मार्ग में चली गई। पहले देवताएं थी, देवताएं वाम मार्ग में चली गई, देवताएं भ्रष्ट हो गई। पहले नहीं थी भ्रष्ट, पहले अच्छी थी, बाद में भ्रष्ट हो गई। देवताएं कैसे भ्रष्ट हो सकती है? हमेशा मन में, हर किसी के मन में, दिल में, आत्मा में सत्व गुण, देवताओं का गुण और सुर और असुर दोनों गुण है। जो प्रभावशाली होता है उसके हिसाब से वातावरण निर्मित होती है। और यह संकल्प जो है, यह संकल्प इस वातावरण को श्रेष्ठ या शुद्ध बना सकते हैं या बुरा भी बना सकते हैं। तो विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, सारा विश्व जब एक ही संकल्प में स्थित हो जाएगा, और एक संकल्प आएगा कि अभी बहुत हो गया, अभी उसमें परिवर्तन चाहिए, अच्छे दिन आने चाहिए, तो ये विश्व का परिवर्तन हो जाएगा। और ये परिवर्तन होते समय अवस्था कैसी होगी, ये अगले चरणों में माउली ने रोडमैप दिया है, उसके ऊपर भी हम उसका चिंतन करेंगे। तो शुरुआत में जैसे शुरुआत हो गई, आता विश्वात्म के देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे तोषो निमज द्यावे पसाय दाने, जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रतिवाढो, भूता परस्परे जडो मैत्र जीवांचे, दुरितांचे तिमिर जावो विश्वस्व धर्म सूर्य पाहो, जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणी जात। पूरी जो संकल्पना है, एक ही संकल्प जो है, अच्छा ये सृष्टि का परिवर्तन हो, इस धरा पे, इस भारत वर्ष पे स्वर्ग का अवतरण हो, ये संकल्प मन में, एक ही संकल्प आता है। उसका उदाहरण मुझे याद आता है, आळंदी में ऐसे कहते हैं, बीच में जी मराठी न्यूज में भी दिखाया था, आळंदी में ऐसे कहते हैं कि ज्ञानदेव की जो पालखी है वो उठाते हैं, तब ऊपर का जो कलश बोलते हैं, टॉप मंदिर में जो टॉप रहता है, वो कलश जो है वो हिलता है,
ऐसी मान्यता है, मैंने भी देखा था। अभी ये मान्यता है कर्ज जो है वो फिक्स है, कैसे हिलेगा, लेकिन हिलता है, और वो हिलता है वो उसका फोटोग्राफ और वीडियो क्लिप भी दिखाई थे न्यूज में। मुझे ये लगता है कि जब 8-9 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं और जब पालकी उठाते हैं और उनके मन में संकल्प आता है कि ये अभी हिलेगा, एक ही संकल्प एक ही समय आ गया तो जो निर्जीव चीज है वो भी हिलेगी। और यहां तो वातावरण है, तो वातावरण बदल करने की, परिवर्तन लाने की सृष्टि में शक्ति हमारे संकल्प में है। और यही संकल्प कैसे है ज्ञानदेव जी ने, मौली ने अगले चरणों में दिखाया है, उसका हम चिंतन करेंगे, वर्णन करेंगे, पठन करेंगे, अध्ययन करेंगे और उसका आनंद भी लेंगे। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आप सबका स्वागत। लाइफ स्किल्स, कितनी तरह के स्किल्स हम सीख चुके थे, लाइफ को ही नहीं जान पा रहे थे। अब वो स्किल्स भी सीख रहे हैं, ज्ञान के आधार पर देख रहे हैं कि कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिन्हें हम सीखते जाएंगे। जिंदगी बहुत सुंदर होती जा रही है और अनुभव से बड़ा जो कहते हैं कि सच कोई और नहीं होता, तो जब हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, अनुभव होता है, तब हमारे लिए वो सच बन जाता है। आज भी बात को कुछ और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं दिन भर में हम ऐसा क्या कर रहे होते हैं कि दिन जो है वो कम पड़ने लगता है। हर बार की तरह हमारे साथ है जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का स्वागत है। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, बहुत सी बातें हमने सीखी। आप, ये लगता है कि दिन छोटा है, इतनी सारी चीजें हैं, काम है, बहुत कुछ और मैनेज करना है, लाइफ को मैनेज करना है। अब हम स्टूडेंट बन के स्किल्स भी सीख रहे हैं ये इस पूरे श्रृंखला के अंदर अंदर कि कैसे हमने अभी तक गलतियां की थी उन्हें ठीक करें, लेकिन टाइम जो है वो मतलब दौड़ जाता है, भागता है। टाइम मैनेजमेंट की वर्कशॉप्स भी की हैं, सेमिनार्स अटेंड किए, नहीं होता। कहाँ गलत हो रहे हैं हम समय को समझने में, उसे मैनेज करने में?
2: सबसे जो फाउंडेशन इनफैक्ट यही है कि भी सवेरे जल्दी उठो तो आपके पास वह 2-3 घंटे और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और तब एक तो जल्दी उठो सवेरे, और वह जिसको कहते अधिकतर 90% का वही पीक टाइम होता है, सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। आपने स्नान आदि किया, तैयार हो गए, उस समय जो सबसे डिफिकल्ट काम है वह करो।
0: लेकिन उस वक्त तो जब हम अपने आप को उठाते हैं हम इतने हैवी हुए होते हैं,
2: विशेष सर्कल आपने खुद क्रिएट किया कि भाई टेंशन में सारा दिन बिताया, लेट सोए, शराब पी के सोए, या तो और रीति से भी और टेंशन में ही सोए तो सवेरे उठे तब भी फिर ये दिक्कत होती है। अगर फुल साइकिल को आप ठीक करो, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जो आपने निश्चित टाइम किया है तब उठ जाओ, और उठते ही फिर ये नहीं कि अभी और 5 मिनट के बाद अभी नींद आ रही है और अभी 10 मिनट के बाद, ऐसे नहीं। आपने टाइम डिसाइड किया तब बस, भल नींद आ रही है तो भी उठ जाओ, एक बार उठ के कुछ पैदल करने लगो, चलने लगो, ब्रश करने लगो। मैं तो सीधा स्नान करता हूँ, चाय भी नहीं पीता, उठे सीधे 1.5-2 ग्लास पानी पिया, बस सीधा ब्रश करने गए, तैयार होने लगे, शेविंग की, और देखो उतनी देर में फिर ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगता है। उस समय क्यों हमें थकावट रहती है, क्योंकि नींद में ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम होता है, और जब तक वो नॉर्मल ना हो आप में एनर्जी नहीं आती है। परंतु अगर इस प्रिंसिपल को अपनाओ कि तुरंत बस आप तैयार होने लगो।
0: लेकिन सुबह उठते तो अखबार चाहिए ही, मतलब कई बार तो लोग कहते हैं कि वो सोए हुए अखबार आती है, चाय आती है, उससे उठते हैं।
2: पूरी मतलब इट्स अ वर्स्ट थिंग, दोनों नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ बैड टी इज बैड, इसीलिए तो बैड टी कहा ना उसको। तो चाय पीनी भी है तो नाश्ते के बाद पियो, उठते ही चाय नहीं पियो, क्योंकि चाय की जो हार्मफुल इफेक्ट है वही है कि इमीडिएटली वो इरिटेशन क्रिएट करती है, स्टमक में एसिडिटी क्रिएट करती है। तो इसलिए खाने के बाद थोड़ी सी चाय पिएंगे तो नुकसान नहीं होगा। और अखबार के नेगेटिव न्यूज है, बस एक आदत की बात है, 2 दिन आप करिए, बस उठते ही 1.5-2 ग्लास पानी पियो, पॉसिबल तो उसमें थोड़ा नींबू भी निचोड़ दो ताकि वो वाइटामिन सी आदि हम आपको मिलेंगे, और फिर तैयार होने जाओ। वो 1.5-2 घंटे में ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, स्नान आदि करके आप फ्रेश भी होंगे। फिर चाहिए तो भले आप एक्सरसाइज करो, थोड़ी सी चाय पीनी है तो पी लो, इस प्रकार से वह जो टाइम आपको मिल जाएगा और तब एनर्जी लेवल भी अच्छा होगा।
0: आपने कहा स्नान के बाद एक्सरसाइज करो,
2: नहीं अगर आपको करनी है तो थोड़ी सी सिंपल तो करो, भले अगर आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो भले पहले ही कर लो तब पसीना होगा। अगर नॉर्मल योगा आदि करते हैं कि जिसमें आपको पसीना नहीं होना है तो स्नान के बाद भी करो तो कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। मुख्य बात तो मेरी ये थी कि भी सवेरे थोड़ा जल्दी उठो और वह आपको 1.5-2 घंटे का जो टाइम मिलेगा वह पावरफुल टाइम होगा, तब डिफिकल्ट काम करो, अच्छे से सारे दिन का प्लानिंग करो। तो जो आपका शुरू में प्रॉब्लम था कि भी दिन छोटा पड़ गया, वह दिन छोटा नहीं पड़ेगा आपका, 25-30% का अर्ली मॉर्निंग में भी हो जाएगा, मेंटली भी आप अच्छे से प्रिपेयर्ड होंगे।
0: लिटरली देखें, ज्यादातर देखें सिस्टर शिवानी, जिंदगी में ऐसा हो रहा है कि सुबह उठे और टाइम हमारे पास कम है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ स्केड्यूल हमने रखा हुआ है जो हमें करना है, और उसके बाद ट्रैफिक जैम मिलेगा या कुछ मिलेगा, उसका मार्जिन रख के भी हमें घर से निकलना है, तो टाइम तो प्लानिंग का, हमें जीने का ही टाइम कम मिल रहा है, ये इसको कैसे हैंडल करें?
2: गलती तो वही है ना कि आप ये सोचते हो कि 45 मिनट्स में तैयार हो जाएंगे, आपको 7:30 को घर को निकलना है तो आप 7 बजे उठते हो, फिर तो हड़बड़ी होगी होगी। ये जो ब्रह्मा कुमारी की लाइफस्टाइल है कि आप थोड़ा जल्दी उठ जाओ तो आपके पास बहुत बड़ा टाइम मिलेगा। मेरा अपना अनुभव है कि हम जल्दी उठते हैं, जो मैंने बताया, तुरंत स्नान कर लेते, तैयार होते हैं, तो बहुत बड़ा टाइम होता है, 2.5-3 घंटे होते हैं।
0: लेकिन मैंने कहा ना कि वो जो हैवीनेस हो जाती है, क्योंकि एक आदत है कि आप 7 बजे उठते हैं तो तब आप फिर भी, क्योंकि आप रात इतना लेट सोए होते हैं और जो भी है, तो इस कारण वो सुबह उठने के बाद भी काफी हैवीनेस रहती है।
2: तो यहाँ पर बायोलॉजिकल क्लॉक का प्रॉब्लम है।
0: ओके,
2: आपने जो अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को ऐसे सेट किया कि रात को 1:30 बजे सोना, सवेरे 7 बजे उठना, उसको बदलना होगा। वो एक दिन में नहीं होगा क्योंकि ब्रेन को भी वह सेटिंग हो गई है। क्या करिए, अगर अभी आप 1:30 बजे सोते हैं तो 5 दिन 1 बजे सोना शुरू करिए तो नींद आने लगेगी, क्योंकि थोड़ा सा ही फर्क है, ब्रेन उसको एडजस्ट हो जाएगा। और 5 दिन के बाद 12:30 बजे सोइए, और सप्ताह के बाद 12 बजे सोइए। ऐसे करते करते आप 10:30-11 पर भी आ सकते हैं, फिर सवेरे जल्दी उठना मुश्किल नहीं होगा।
0: तो पहले हम सोना जल्दी करें या उठना करें?
2: सोना जल्दी करो, थोड़ा आधा घंटा ही, 1/2 आवर ही आप जल्दी सो, भले उसी टाइम पर उठो, फिर और कम हुआ तो उठना जल्दी भी हो जाएगा, क्योंकि जो पीरियड है स्लीप का वो तो पूरा हो गया।
0: और हम एक जो मैंने अनुभव किया है, घर पहुंचते ही 10 बजे हैं, फिर क्या करें?
1: तो भी अपनी, अब ये भी सोचना होगा हम 10 बजे क्यों घर पहुंच रहे हैं, हमें हर काम करने में आज ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातों पर हम अटेंशन नहीं रख रहे। आई विल हैव टू स्टॉप, reschedule everything, start all over again. हम सब जब meditation सीखना शुरू करते हैं, and कई बार हमने ये बात की है, राजयोग meditation is not 10 minutes or half an hour, राजयोग meditation is a lifestyle of 24 hours. तो जो परिवर्तन हमें एक तो attention रख के लाना है, कुछ धारणाओं को हर रोज follow करना है, जैसे ही हर चीज पर follow करते हैं, कितने बजे उठना, कितने बजे सोना, क्या भोजन खाना, सारा दिन में कैसे सोचना और मेडिटेशन करना, धीरे धीरे द होल साइकिल विल फॉल इनटू प्लेस। देखो, जब डिसहार्मनी होती है तो पूरे एस्पेक्ट पर डिसहार्मनी होती है, जैसे ही आप उसको हार्मोनाइज करना शुरू कर देते हैं पूरा दिन हार्मोनाइज हो जाएगा। एक चीज भी अगर हम शुरू करें कि मॉर्निंग उठकर मेडिटेशन करेंगे थोड़ी देर,
0: कभी भी उठो,
1: जल्दी थोड़ा, क्योंकि अगर लेट उठे तो फिर बैठने के लिए टाइम नहीं है। अभी तक हम क्या कहते हैं, टाइम होगा तो मेडिटेशन करेंगे। सी अगेन, हमने मेडिटेशन को अपने प्लानर में कहाँ डाल दिया कि अगर टाइम होगा तो मेडिटेशन करेंगे, तो टाइम तो कभी होता ही नहीं है। हमें अगर उसकी इक्वेशन को चेंज करें, मेडिटेशन करेंगे तो टाइम मैनेज होगा। सी, It's just the way I tune myself. It makes all the difference. If I say time hoga to meditation karenge, to wo to ho hi nahi raha. To wo hafte mein kabhi ek din time milega to karenge. Aur kyunki roz nahi karenge, to jab wo ek aadha din karenge, yog lagega nahi. Phir kahenge lagta nahi. Kya aadha ghanta nikal ke baithe laga bhi nahi. So then it goes out of the priority list. Main roz meditation karunga. इससे मेरा थॉट और टाइम मैनेज होगा। नाउ लेट मी एक्सपेरिमेंट करके कि मुझे रोज सुबह जल्दी उठना है, जो भी टाइम हम उठते हैं, क्योंकि इमिजिएटली शायद नहीं कर पाए, प्रेफरेबली जैसे हमने पहले भी शेयर किया कि 4:30 जो अमृत वेले का समय है, जब माइंड की एक्टिविटी, जब हम वो मेडिटेशन बहुत पावरफुली एक्सपीरियंस कर सकते हैं, थोड़े दिन उसको अभ्यास करके देखें। जब सुबह जल्दी उठते हैं ना, तो रात को अपने आप जल्दी नींद आती है, अपने आप आने ही है।
0: ये तो होता है कि जिस दिन आप सुबह होते,
1: तो अगर स्टार्ट करना है, मुश्किल हो रहा है, तो जस्ट स्टार्ट कि कल से मुझे ये स्टार्ट करना है और वो मेडिटेशन मुझे प्रैक्टिस करना है। नहीं भी हो रहा, अभी हम नए हैं, फिर भी मुझे रोज करना है। कोई भी एक्सरसाइज जब हम शुरू करते हैं तो बहुत दर्द होता है पहली बार। अब जो हमारे अंदर अगर विल पावर नहीं है तो हम कहते हैं छोड़ो, एक्सरसाइज करने से दर्द होता है। एक्सरसाइज करने से तो दर्द नहीं होता ना कभी, लेकिन वो कुछ एक दिन हमें क्रॉस करना पड़ता है। सेम विद मेडिटेशन, थोड़े दिन हम कहेंगे उठते हैं नींद आती है, उठते हैं योग नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा, अभी हम स्लीपी है। फिर भी हम बैठेंगे, जो सारी तैयारी करके जैसे गिरीश भाई ने बताया, हम बैठेंगे लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि योग करेंगे और थॉट्स बहुत स्लो डाउन हो जाएंगे, सिंप्लीफाई हो जाएंगे, प्योरीफाई हो जाएंगे, मेरे सारा दिन की थॉट्स कैसे चलेंगे। सी वो मेडिटेशन मतलब सिर्फ उतनी देर नहीं ना, आई एम ट्यूनिंग माई सेल्फ टू अनदर फ्रीक्वेंसी। सारा दिन थॉट्स कैसे हो जाएंगे, स्लो डाउन होंगे। रात को घर भी पहुंचेंगे, सोने का टाइम होगा, थॉट्स कैसे होंगे, स्लो होंगे। सोएंगे अच्छी नींद आएगी, सुबह उठना इजी हो जाएगा। इट विल हैव टू स्टार्ट विद द मेडिटेटिव थिंग इन द मॉर्निंग, कि मेडिटेशन और ज्ञान, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन। हम लोग जब सभी पहली बार आते हैं, हम में से किसी को सुबह पहले 4 बजे उठने की नहीं आदत होती है। इट इज़ एन अनअर्थली टाइम, वी यूज टू थिंक 4 बजे कोई उठता है, ये कोई उठने का टाइम है, अभी तो रात लगती है बाहर। Everyone comes with their old lifestyle. कोई 6 बजे 7 बजे, कोई तो 8-9 बजे उठने वाले लोग थे, लेकिन किया, परिवर्तन हुआ, प्राप्ति हुई। थोड़े दिन मुश्किल लगा, थोड़े दिन के बाद रह नहीं पाए उसके बिना, क्योंकि उसका वो आधा घंटा जो हम निकालते हैं वो आधा घंटा नहीं है। इट इज हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन माई एंटायर 24 आवर्स। अगर मैंने एक्सरसाइज के लिए टाइम निकाला तो पूरे दिन शरीर ठीक रहेगा ना, और पूरा दिन क्या, फिर हर रोज शरीर ठीक रहेगा। लेकिन कहें कि वो आधा घंटा नहीं है एक्सरसाइज के लिए, तो भी सारा दिन काम करेंगे लेकिन ड्रैग करते हुए, इस तरह से एनर्जेटिक। सो लेट्स बिगिन विद दैट मेडिटेशन। दिस हैज टू बी पुट ऑन टू माई प्रायोरिटी लिस्ट, कि ठीक है मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ विद दिस। हम सेंटर पर जाते हैं, मुरली स्टडी करते हैं, हु एवर थॉट दैट वी हैड टाइम फॉर दैट बिफोर। आज ब्रह्मा कुमारीज में जितने भी भाई बहने आते हैं, 9 लाख से ऊपर परिवार, परिवार है ना, उनका भी शॉप है, बिजनेस है, जॉब है, बच्चे हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड, हमारे पास इतने इतने बच्चे हैं। अगर उनका स्कूल जाने का टाइम 8 बजे का है, पहले वो 8 बजे तक तैयार होते थे ना, आज वो 7 बजे तक तैयार होकर सेंटर पर आते हैं मुरली क्लास के लिए। क्या प्राप्ति है उस छोटे से बच्चे को, 1 घंटा एक बच्चे के लिए जल्दी उठना। इट हैज टू बी एक्सपेरिमेंटेड, देन यू गेट द रिजल्ट, देन यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। फिर वो आपकी हार्मनी में लाइफस्टाइल चलने शुरू हो जाएगी।
2: उसमें 3 बातें एक्चुअली, एक तो जो कहा कि प्रायोरिटी उसको दीजिए, कि मुझे जल्दी पहुंचने की प्रायोरिटी। अभी घर में आप पहुंचते हैं वो 10:30 बजे, तो मुझे 9 बजे तक घर पहुंचना ही है। उसके लिए दूसरा ये करना पड़ेगा कि किसी व्यक्ति को ना भी कहना पड़ेगा, लर्न टू से नो, कि भी मुझे पहुंचना है 9:30 तक, तब मेरी दिनचर्या ठीक होगी। और तीसरी बात, कहीं छोटा सा सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, बल बिजनेस थोड़ा सा कम चले कोई बात नहीं, और कोई एकाध काम आपका रात्रि का हुआ कोई बात नहीं, थोड़े दिन में करूंगा, फिर सवेरे तो और आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, उल्टा और आप एफिशिएंटली करेंगे। जैसे कहते हैं सक्सेस के लिए भी कहा है, डूइंग राइट थिंग एट अ राइट टाइम
1: इन द राइट वे,
2: राइट वे।
1: यू मे बी डूइंग थिंग्स बट नॉट इन द राइट वे एट द राइट टाइम,
0: एंड आई थिंक वी डोंट इवन नो, हमें पता ही नहीं है कि राइट क्या है। राइट और रॉन्ग को भी हमने इतना रिलेटिव कर लिया है,
1: इसीलिए तो मेहनत ज्यादा और रिजल्ट कम, और फिर बाकी जो सारे साइड इफेक्ट साथ में आ रहे। इट्स ओनली बिकॉज ईटिंग नॉट एट द राइट टाइम, स्लीपिंग नॉट एट द राइट टाइम, थिंकिंग नॉट इन द राइट वे। इस पूरी सीरीज में हमने देखा है कितनी सारी हम गलतियां करते आ रहे हैं। छोटी छोटी गलतियों को ठीक कर लें, टाइम वुड नॉट बी एन इश्यू, बिकॉज थॉट्स स्ट्रीमलाइन होते जा रहे हैं। हमारे सेंटर पर हैदराबाद में मिस्टर KVK राजू आते थे। He's left the body. He was chairman of Nagarjuna Fertilizers. Chairman hai, bahut badi industrial setup ka. Pehle to kehte the time hi nahi hota tha, mere ko to 1:30-2 baje to sone ka time milta hai, aur bahut kam der sote the. Lekin jab meditation ka prapti samajh mein aaye, to unhone 3:30-4 baje uthna shuru kiya. Jaise Girish bhai ne kaha, sacrifice. Unhone parties band kar di, late night socializing band. चेयरमैन है ना, ये थोड़ी सोचा कि मेरी कंपनी में कोई लॉस हो जाएगा, नहीं, समझ में आया व्हाट इज गुड फॉर मी। उनके एक प्लांट में बहुत कुछ बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी काफी समय से, बिटवीन द लेबर एंड द टॉप मैनेजमेंट, मीटिंग्स डिस्कशंस, नो सोल्यूशन। एक दिन वो मॉर्निंग में उठे 3:30, ही वॉज सिटिंग इन मेडिटेशन, देयर इज द आंसर। What the idea what he got in the early morning, he put it forward to his board of directors us din meeting mein. Everyone went unanimous, yes, ye isi tarah hona chahiye. जो उन्होंने उस दिन प्लान किया और इम्प्लीमेंट किया, उनको गवर्नमेंट के लेवल से उस चीज़ के लिए अवार्ड मिला था. एंड ही सेड कितने दिन मीटिंग्स डिस्कशंस एंड मॉर्निंग मेडिटेशन एंड मुझे आइडिया आया. द टाइम वेस्ट हो रहा था ना, लेकिन हमें लग रहा था हम बहुत बिजी हैं, डिस्कशन कर रहे हैं. कोई भी प्रॉब्लम है, डिस्कशन इज समटाइम्स वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी. हम सुपरफिशियल लेवल पर सोच रहे हैं, हम एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में सोच रहे हैं, कभी एक्यूरेट सोल्यूशन नहीं आएगा. लीव इट, इसके बारे में कल सोचेंगे. जब साइलेंस में होते हैं, जब हमारी एकदम ये एंग्जाइटी स्ट्रेस वाली थॉट्स बिल्कुल क्लियर एंड प्योरिटी की स्टेट में है, ऐसे सोल्यूशन आकर सामने खड़ा हो जाएगा. तो कितना टाइम बचा?
0: आपने कहा कि टाइम नहीं है इसलिए मेडिटेशन नहीं करते हैं. मेडिटेशन करेंगे तो आपका टाइम जो है आपके पास बहुत ज्यादा हो जाएगा, या टाइम आपका मैनेज हो जाएगा.
1: वी फाइंड दैट के बहुत टाइम है, और बताओ और क्या काम करना है, जबकि वी डूइंग मच मोर देन जो पहले किया करते थे सारा दिन के अंदर. इट्स जस्ट दैट थॉट स्ट्रीमलाइंड होती है ना, हर काम को कम टाइम लग रहा है.
0: हाउ इज दैट पॉसिबल? अगर
1: मैं काम कर रही हूँ प्रोजेक्ट पे और कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई फियर नहीं है, इनसिक्योरिटी नहीं है, ये होगा नहीं होगा, होगा नहीं हुआ, नहीं हुआ तो अगर उसका पहले ऑल दिस इज नॉट देयर, तो आपकी पूरी कॉन्सेंट्रेशन किस पर है? काम पर है. डेफिनेटली वो काम जल्दी होगा और गलतियों के बिना होगा. आपको डिसीशन लेना है, आपके माइंड में डाउट नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं है. डिसीशन लेने में कितना टाइम लगेगा? आप यहाँ वहाँ बैठकर इधर उधर की इसकी उसकी बातें नहीं कर रहे हैं, अंदर भी नहीं चल रहा, बाहर भी नहीं कर रहे, कितना टाइम बचेगा? यू कुड सेव लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, एंड सारा काम जल्दी जल्दी जल्दी होता जाएगा. यू विल से मोर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, सिर्फ काम नहीं होगा, इंजॉय

0: हम नहीं थकते हैं। आज हम फिजिकली स्टैटिक बैठे हैं, कंप्यूटर पे बैठे हैं तो बैठ ही गए घंटों घंटों, लेकिन माइंड कितना फास्ट है। तो आई हैव टू आस्क माई सेल्फ, कौन थका एट द एंड ऑफ द डे? थका कौन? शरीर ने तो बहुत ज़्यादा कुछ किया ही नहीं, मन बहुत ज़्यादा थका, और फिर रात को उसको स्लो डाउन नहीं किया, तो ये थके हुए मन को रात को सोने भी नहीं दिया, ये अभी भी रात को चल रहा था। तब जो आपने कहा कि सुबह उठेंगे तो सर दर्द हो रहा है, थके हुए मन के साथ उठे हैं, इट्स स्टिल लाइक वेरी हैवी ओवर हियर, फिर भी टाइम नहीं है, रेस्ट थोड़ी कर सकते, फिर इस थके हुए मन को लिया, फिर उस जर्नी पर चले। इमेजिन, डेज एंड डेज, ईयर्स एंड ईयर्स हैव पास्ड लाइक दिस, व्हाट विल बी द रिजल्ट? दैट्स द ओनली रीजन व्हाई वी आर सफरिंग सो मच। जैसे इसको स्लो डाउन करेंगे हर चीज स्ट्रीमलाइन हो जाएगी।
1: मॉर्निंग में बहुत कुछ आपको मेरा अनुभव सुनाता हूँ। मुझे कई बार लिखना होता है, बुक्स लिख रहे हैं, देखा है कि अगर इवनिंग में लिखते हैं तो अगर एक पेज लिखने में आपको आधा घंटा लगा तो मॉर्निंग में वही 10 मिनट में लिख पाते हैं। इट मीन्स इट इज ऑलमोस्ट ट्रिपल। तो इसलिए भले थोड़ा जो तीनों पॉइंट्स मैंने बताई वो फॉलो करके सवेरे एटलीस्ट 1 घंटे का टाइम आप निकालो कि फ्रेश हो गए, सब कुछ वो अपने लिए है, चाहे उसमें मेडिटेशन भी कर सकते हो और सारे दिन का फॉरवर्ड प्लानिंग करना है वो फॉरवर्ड प्लानिंग करो तो सारी समस्या समाप्त हो जाएगी।
2: एक मैं बात ये जानना चाहती हूँ, ये आपने कही बात कि फिजिकली, एक्चुअली सडनली आई रियलाइज कि हमने फिजिकली तो कुछ करते ही नहीं है। ज्यादातर लोग जो हैं वो फिजिकल बहुत एक्टिविटी नहीं करते हैं। बाय द एंड ऑफ द डे हमें इतनी ज्यादा थकान है कि हम कुछ भी शाम की वाइंडिंग अप भी नहीं कर पाते हैं। तो ये मेडिटेशन के बाद जो हम दिन की शुरुआत करते हैं उसमें और आज जो मैं जी जिंदगी जी रही हूँ उसमें क्या फर्क हो जाएगा?
0: क्योंकि थॉट प्रोसेस स्लो डाउन एंड एक्यूरेट होता जाएगा। सिर्फ पूरा हम समझते आ रहे हैं थॉट हर चीज कर रहे हैं, थॉट का बॉडी पे इफेक्ट। आपने कहा बॉडी ज्यादा कुछ नहीं करती, फिर भी हम थका हुआ क्यों महसूस करते हैं? सारा दिन में हमने कितनी टॉक्सिक थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स कितनी क्रिएट की। गिरीश भाई ने बताया हर थॉट का बॉडी के हर सेल पे असर, हर थॉट का ब्रेन के हर केमिकल पर असर। तो इतनी टॉक्सिक नेगेटिव थॉट्स क्रिएट की होंगी तो ब्रेन पर और बॉडी पर कितना असर पड़ा होगा। किया कुछ भी नहीं था, गाड़ी में बैठे थे, गए थे, सारा दिन एसी ऑफिस में बैठे वापस, यहाँ क्या क्रिएट किया? वी एक्सपीरियंस के जब हम माइंड का ध्यान रखते हैं, हम फिजिकल बहुत एक्टिविटी भी अगर कर रहे हो तो भी माइंड लाइट है एंड राइट है तो फिजिकली भी एग्जॉशन है। आप अपने आप को एक हॉलीडे पे देखो, लुक एट योर सेल्फ ऑन अ पिकनिक, ठीक है? आप वॉक करते हैं, स्विम करते हैं, ड्राइव करके 2-3 घंटा दूर जाते हैं, वहाँ पे ट्रैक करते हैं, ये वो चीज़ें हैं जो आप अपने नॉर्मल डे पे कभी नहीं करते, राइट? फिजिकली आप बहुत एक्टिव हैं उस दिन, इनफैक्ट बहुत एग्जॉस्टेड हैं उस दिन, लेकिन आप मेंटली कैसे थे पिकनिक वाले दिन पर?
2: बहुत खुश थे।
0: तो घर आके भी कैसे लगेगा? और कुछ मूवी चलना है रात को? I still have the energy. Why? Physically, सब चीज टूट रही है, दर्द हो रहा है. Mind, I did not create any stress today. मैंने आज किसी पर गुस्सा नहीं किया सारा दिन पे. There was no fear. Mind over matter. मन का नहीं ध्यान रखेंगे तो टाइम का भी ध्यान नहीं रख सकते, क्योंकि सब चीज क्रम्पल होने लग जाती है. तो मेडिटेशन हम मॉर्निंग में भी करते, और फिर जैसे हमने कई बार डिस्कस किया, हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट के लिए वो ट्रैफिक कंट्रोल, वो चार्जिंग, ताकि अगर कहीं भी गलती से फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी दूसरी तरफ जा रही थी, हमें फिर वो अटेंशन मिल जाता, हम रुक कर फिर राइट थॉट्स क्रिएट करना शुरू करते। हमने कितना डिटेल में डिस्कस किया राइट थिंकिंग, तो वो राइट थिंकिंग कई बार बीच बीच में चेक कर लेते हैं। पूरा दिन अच्छा अगर बीतेगा, बहुत अच्छी नींद रात को आएगी, अगले दिन सुबह अलार्म नहीं लगाना पड़ेगा, अपने आप आपकी नींद खुल जाएगी।
1: और एक बहुत बड़ी मदद मिलती है, और सब चीज़ों की तुमने चर्चा की है परंतु सवेरे सवेरे आपने मेडिटेशन कर लिया तो परमात्मा की भी मदद मिलती है, जैसे वो हमें गाइडेंस दे रहे हैं, तो दैट इज अ ग्रेटेस्ट थिंग।
2: लेकिन मतलब अभी भी ज्यादातर लोगों के साथ ये बात है कि मेडिटेशन और मेरी डेली लाइफ में क्या परिवर्तन है, क्या कनेक्शन है? सी, मेरे डेली ऑफिस के जो मीटिंग्स हैं, ऑफिस की जो हैंडलिंग है, ऑफिस के जो डिसीजंस हैं, उसमें और मेडिटेशन, तो मेरा जो हम मेडिटेशन यहाँ कर रहे हैं एक परमात्मा के साथ कनेक्शन है या अपने साथ कनेक्शन है, उसमें मेरा ये जो ऑफिस के डिसीजंस हैं या लाइफ के डिसीजन हैं, उसका कनेक्शन क्या है?

0: तो एक बार तो आप बिल्कुल रिलैक्स्ड होंगे तो लोगों से डील करना बहुत इजी होगा। कई बार हम एंजाइटी में लोगों से डील करते हैं तो उल्टा गलतियां कर बैठते हैं। रिलैक्स्ड वे में करेंगे तो सही करेंगे। थोड़े डिटैच भी होंगे तो आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो सही होगा। अब देखिए, डिटैच होके कोई देखता हो तो वह चीज़ को सही दिखेगा। वैसे आप डिटैच होंगे तो आपका पर्सपेक्टिव सही हो जाएगा, अन्यथा आप अटैच होकर के कर रहे हैं तो आपका पर्सपेक्टिव भी गलत हो रहा है। इंट्यूशंस भी आपको मिलेंगे, जो इंट्यूशंस भी मदद करेंगे कार्य को सही करने में।
1: मेडिटेशन में जो सबसे पहली बेसिक जो हम एक्सपेरिमेंट करते आ रहे हैं, माय थॉट्स आर इन माय कंट्रोल, जैसे ये फंडामेंटल चीज़ पर मास्टरी आ जाती है, आपके इमोशंस पर मास्टरी आने लगे, आपने सारा दिन किसी पर गुस्सा नहीं किया, चिल्लाया नहीं, आपने लोगों को वो जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करना शुरू किया, तो आपने उनको कौन सी एनर्जी भेजी?
2: एक्सेप्टेंस के
1: जैसे आपने उनको वो वाली एनर्जी भेजी, आपको उनसे कौन सी एनर्जी मिली? से एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि हम क्यों भारी हो रहे हैं, हमें अपने आसपास के लोगों से कौन सी एनर्जी मिल रही है। आई मे बी द लीडर ऑफ माई कंपनी, लेकिन अगर मैं स्ट्रेस्ड हूँ और उस वजह से कई लोगों के ऊपर मैं गुस्सा कर रहा हूँ, या गुस्सा नहीं भी कर रहा, बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, बहुत फियर क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे उनसे फियर की एनर्जी मिलेगी, ये एनर्जी मुझे भारी करेगी, उनको तो करेगी करेगी। आई ऑलवेज फील कि एक लीडर के लिए एक जूनियर से ज़्यादा रिस्की है। हमें लगता है कि जो जूनियर्स हैं इनको डांट खानी पड़ती है, तो इनके लिए बहुत टफ है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, चेकअप वर्कर का नहीं होता, एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप होता है। डांट किसको खानी पड़ती है? ज़्यादातर वर्कर को खानी पड़ती है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये एग्जीक्यूटिव को क्यों हो रहा है? क्योंकि एक एग्जीक्यूटिव कम से कम 10, 20, 100, 1000 वर्कर्स के लिए जिम्मेवार है। मैं एक को अगर डांटती हूँ, उसको तो एक ही बार डांट मिलती है, मैं 10 को डांटती हूँ, मुझे कितनी बार नेगेटिव एनर्जी मिलती है? 20 times, 10 times वेन आई गेव इट एंड 10 times वेन दे गिव इट बैक टू मी। तो मेरी तबीयत पर तो असर पड़ना ही है। अगर मैंने बचा लिया अपने आप को इन चीज़ों से, और उल्टा अगर मैंने 10 times प्यार और एक्सेप्टेंस की एनर्जी भेजी, तो मुझे 20 times कौन सी एनर्जी मिलेगी? हाउ विल आई फील बाय द एंड ऑफ द डे? मेरे को लगेगा जितना पहले था उससे भी ज्यादा लेकर मैं शाम को घर पर
2: इनफैक्ट इट्स अ बिग टेस्ट। आप जैसा फील कर रहे हैं शाम तक जाते जाते, ये आपको बताएगा कि आपके दिन भर की स्थिति, आपने क्या क्या दिया है।
1: बिल्कुल, इट इज एब्सोल्युटली अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट, और कुछ भी नहीं है, इट्स अ रिफ्लेक्शन। मैंने आज सारा दिन कौन सी एनर्जी क्रिएट की, कौन सी एनर्जी गिव की, और फिर औरों से मुझे एनर्जी मिली, शाम को एक्सरे आपको पता चलेगा। यू नो एग्जैक्टली वेयर यू हैव मेड अ मिस्टेक। एटलीस्ट नाउ डोंट वेस्ट टाइम इन ब्लेमिंग अदर पीपल, लेट मी जस्ट चेंज व्हाट आई गिव फ्रॉम टुमारो। हर स्टेप पर चेंज आएगा, बहुत अच्छा सारा दिन बीतेगा, एंड यू विल एंजॉय योर वर्क, मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दैट।
2: यस, वेरी ट्रू। इनफैक्ट आई विल एंजॉय द डे, यू नो, जो पूरा दिन, इतना सुंदर दिन मेरे लिए दिया है, उसको मैं एंजॉय तो कर पाऊंगी। सिस्टर शिवानी, डॉक्टर पटेल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शांति।
0: शांति।
2: सचमुच देखने की बात है, बार बार हम कितनी बार फिल्म में या किसी किताब में, कविता में सुनते थे, पढ़ते थे कि जिंदगी एक बहुत खूबसूरत एहसास है। एहसास क्या हो रहे हैं हमें? आज हम जिंदगी जीना ही नहीं चाहते क्योंकि इतना थका हुआ महसूस करते हैं। आज जो इतना बड़ा टेस्ट हमारे सामने आया है, हम शाम को कैसा महसूस कर रहे हैं? अगर थके हुए हैं, अगर दुखी हैं, अगर परेशान हैं, गुस्से में हैं, इसका मतलब दिन भर में यही चीज़ें ना सिर्फ मैंने दी हैं बल्कि रिसीव की हैं। जब मैंने जितनी बार मैंने दी उससे डबल टाइम मैंने मुझे मिली है, क्योंकि उतनी बार मैंने दी थी और फिर उन्हीं लोगों से मुझे वापस मिली। अब देखना ये ज़रूरी है कि मैं क्या चाहती हूँ, कैसा महसूस करना चाहती हूँ। और मैं हमेशा अपने आप को कहती हूँ कि मैंने तो दिन भर अच्छा रही थी, लेकिन अगर शाम को मैं थकी हुई हूँ, इतनी भारी हूँ, तो इसका मतलब ये मेरे द्वारा क्रिएट की गई है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, टाइम को मैनेज करने के लिए जो अभी तक हमने इतने तरीके किए थे, एक जो आज मैं सूत्र पकड़ कर जा सकते हैं हम लोग, कि सुबह अपनी अपने हाथ में कर लें। जैसे अभी तक सोच को अपने हाथ में किया था, सुबह उठने को अपने हाथ में कर लें। एक बार मन को ये तैयार कर दें, समझा दें, बाकी सारी चीज़ें उठते ही मेडिटेशन को अपना, अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें, बाकी सारी चीज़ें विल फॉल इन प्लेस। ये अनुभव बता रहा है और देखते हैं, हम प्रयास करते हैं, पता चलेगा कि हमारा अनुभव क्या कहता है। आज अवेकनिंग विद बाबा कुमार इसमें इतना ही। फिर मिलेंगे।

0: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित एवं कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी,
1: एपिसोड 2, स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम और अब तक हुई प्रगति की झलक।
0: दोस्तों लीजिए, फिर आ गए हैं वही दिन वही बार जिसका हम बेसब्री से करते हैं इंतजार।
1: आप सभी को स्वच्छिका और सुजल का सादर नमस्कार।
0: क्या है कि स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी कार्यक्रम देता है हमको शुद्ध विचार। हर तरफ, हर कोना, हर गांव में हो रहा है स्वच्छता का प्रचार।
1: दोहराना है हमें ये संकल्प और ये व्यवहार कि स्वच्छता ही है हम सबका अधिकार।
0: रखना है स्वच्छ हर घर का शौचालय इस बार। धोएंगे साबुन से हाथ खाने के पहले और शौच के बाद।
1: करेंगे सफाई से प्यार, करेंगे सबसे स्वच्छता की गुहार।
0: केवल मनोरंजन ही नहीं, उद्देश्य है हमारा।
1: बैठ जाए हर मस्तिष्क में यह संकल्प कि स्वच्छता ही है एकमात्र विकल्प।
0: स्वस्थ तन और स्वस्थ मन में ही वास करते हैं सुविचार।
1: प्रण करें आज ही कि स्वच्छ सुजल करना है हमें हर गांव।
0: दूर हो जाएगी बीमारी अगर स्वच्छता की होगी वातावरण में बहार।
1: दूषिका भी भाग जाएगी अगर होगी आपके आसपास ऐसी बयार।
0: यही है स्वच्छ सुजल गांव अभियान की पुकार।
1: साथियों, इन सब के सहारे ही होगी हमारी नैया पार। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की पूरी जानकारी देंगे, विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों की कहानियां सुनाएंगे और साथ ही आपको ये बताएंगे कि कैसे इस योजना का उद्देश्य फेज 1 में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और शौचालय की सुविधा प्रदान करके डेफिकेशन फ्री ODF भारत बनाना था और फेज 2 में हर गांव को ODF प्लस मॉडल बनाना है। इस मिशन के तहत शौचालय निर्माण और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधक तकनीक को स्थापित कर स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने तथा लोगों में व्यवहार परिवर्तन लाने पर जोर दिया जाता है।
0: स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के पहले चरण में सरकार ने हर गांव के हर घर में शौचालय बनाने का संकल्प लिया था और स्वच्छिका तुमको याद है? देश के सभी गांवों ने स्वयं को ODF घोषित किया था। अब यह ना कह देना कि ODF गांव क्या होता है।
1: अरे रे रे, ऐसे कैसे कह दूंगी, मुझे मालूम है। ODF मतलब खुले में शौच मुक्त गांव, ओपन डेफिकेशन फ्री है। ये एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग उन क्षेत्रों में वर्णन करने के लिए किया जाता है जहां लोग अब खुले में शौच नहीं करते हैं बल्कि शौचालय का उपयोग करते हैं। ये हम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत सुनिश्चित करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण पहल है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और वहां की महिलाओं की निजता और गरिमा सुनिश्चित करते हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाते हैं। सही बताया ना?
0: बिल्कुल। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण में हमारे गाँव ODF प्लस मॉडल की ओर बढ़ रहे हैं। एक ODF प्लस मॉडल गांव वह होता है जो खुले में शौच से मुक्त हो चुका है, ठोस एवं तरल कचरे का समुचित प्रबंधन कर रहा है तथा जहां स्वच्छता का स्तर उच्च हो और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा एवं जल का जमाव ना हो।
1: इसमें ये सुनिश्चित करना है कि गांव के सभी घरों के साथ साथ प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर और आंगनवाड़ी केंद्र में शौचालय की सुविधा हो और सभी सार्वजनिक स्थानों और घरों में ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रभावी प्रबंधन हो।
0: लेकिन सरकार के साथ साथ इसके लिए समुदाय की भागीदारी भी बहुत जरूरी है। हमारी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है रेडियो के माध्यम से और आप लोगों को यह देखना जरूरी है कि इस मुहिम में कोई भी परिवार छूटे नहीं।
1: अच्छा, ये लेकिन मुझे ये पता है कि अब तक 5.1 लाख से ज्यादा गांव स्वयं को ODF प्लस मॉडल घोषित कर चुके हैं। इसके साथ 5.50 लाख से अधिक गांव में गंदला जल प्रबंधन और 5.5 32 लाख से अधिक गांव ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कर चुके हैं।
0: देश में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए सरकार के प्रयास जारी है। हर गांव को साफ बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना और हर घर में स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन योजना शुरू की गई है और हमारी आपकी सहभागिता इस महाअभियान में बनाकर रखना भी बहुत जरूरी है। तो सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो मन भवन, और उसमें सुनते रहिए ये कार्यक्रम
1: स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी, जहां हर घर तक पहुंचेगी हमारी आवाज, हमारी बात। लेकिन फिलहाल इन सारी बातों को विस्तार से बताने के लिए हमारे बीच विशेषज्ञ उपस्थित हो चुकी है। चलिए पहले सुनते हैं उनकी बात।
2: नमस्कार साथियों, मैं ऐश्वर्या सिंह, संयुक्त सचिव एवं मिशन डायरेक्टर, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से बोल रही हूँ। आज आप सभी से स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी कार्यक्रम के जरिए जुड़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज हम बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की, स्वच्छ सुजल गांव की, और हम इन दोनों विषयों में कैसे एक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से जब स्वच्छता और खुले में शौच का विषय उठाया था तो यह अपने आप में अभूतपूर्व था। उनके मार्गदर्शन में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई और हम सब ने मिलकर अपने देश के हर गांव को खुले में शौच से मुक्त यानी ODF बनाने का जिम्मा उठाया। आने वाले वर्षों में यह मिशन और स्वच्छता का विषय एक जन आंदोलन बना और हमें इसमें आप सभी का पूर्ण सहयोग मिला। इस दौरान देश में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ और महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर 2019 में हमने खुद को ODF घोषित किया। इस अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि और इसकी नींव थी लोगों में आया व्यावहारिक परिवर्तन या बिहेवियरल चेंज। घरों, पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों, युवाओं, बच्चों, सभी में स्वच्छता के लिए जागरूकता बढ़ी और सभी ने इसको अपनी जीवन शैली का एक अंग बनाया। लेकिन हम केवल ODF पर नहीं रुके। 2020 से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण यानी फेज 2 पर काम शुरू हुआ। इसमें लक्ष्य था ODF से आगे ODF प्लस की ओर बढ़ना, अपने गांवों को ODF प्लस मॉडल गांव बनाना। ODF प्लस मॉडल गांव का अर्थ है कि गांव न केवल खुले में शौच से मुक्त हो बल्कि वहां का कचरा, गंदा पानी और प्लास्टिक अपशिष्ट या प्लास्टिक वेस्ट का भी सही तरीके से निपटान किया जा रहा हो। मतलब इसके तहत सरकार ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन यानी सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर भी जोर दे रही है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस दूसरे चरण में 31 मार्च 2026 तक हमारे 5 लाख से भी ज्यादा गांव ODF प्लस मॉडल घोषित किए जा चुके हैं और यह काम आप सभी के राज्यों में अभी भी जोर शोर से जारी है। ऐसे ही स्वच्छ सुजल गांव एक ऐसा गांव होता है जहां साफ पेयजल की व्यवस्था हो और हर परिवार के पास बेहतर स्वच्छता की भी सुविधा हो, यानी वह एक ODF प्लस मॉडल गांव भी घोषित किया जा चुका हो। साथियों, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण केवल एक सरकारी योजना नहीं, यह एक जन आंदोलन है जिसमें सरकार के साथ साथ आप सभी की जन भागीदारी बहुत आवश्यक है। इस अभियान के अंतर्गत बन रही सुविधाओं, शौचालयों, कचरा प्रबंधन के केंद्र, प्लास्टिक वेस्ट यूनिट इत्यादि के रख रखाव और इनको सुचारू रूप से चलाने में राज्यों, जिलों, गांवों की हम सबकी अहम भूमिका है। इस भूमिका को भी आप सभी को पूरे मन से निभाना है। और हाँ, आपसे अनुरोध है कि अपने गांव, ब्लॉक, जिले के बच्चों को, युवाओं को भी स्वच्छता के विषय के प्रति जागरूक बनाएं, उनको इस अभियान के अंतर्गत बनी व्यवस्थाएं दिखाएं, जिससे भविष्य में वे भी आगे बढ़कर स्वच्छता का दीप प्रज्वलित रखें। तो आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें, हम राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना से हर काम करेंगे। हम स्वच्छ भारत विकसित भारत के लक्ष्य में अपना भरपूर सहयोग करेंगे। ना हम कचरा फैलाएंगे, ना दूसरों को फैलाने देंगे। हम अपने गांव को ODF प्लस मॉडल गांव बनाएंगे और जो गांव ODF प्लस मॉडल बन चुके हैं उनकी व्यवस्थाओं को सुचारू रखने में सहयोग देंगे। इसी संदेश के साथ मैं ऐश्वर्या सिंह आपसे विदा लेती हूँ। स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और जुड़े रहिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के इस जन आंदोलन से। धन्यवाद। जय हिंद।
0: हमारी विशेषज्ञ ऐश्वर्या सिंह संयुक्त सचिव एवं मिशन डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय ने कितने अच्छे से यह सारी बातें आप लोगों तक पहुंचाई। याद रखना है आपको और ये आपके क्षेत्र में कार्यान्वित हो इसके लिए आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है।
1: और एक मजे की बात बताऊं सुजल, देश भर के 100 सामुदायिक रेडियो के माध्यम से इस कार्यक्रम का पहला एपिसोड ही सुनने के बाद मैं स्वच्छिका और तुम सुजल साथ में दूषिका भी बहुत फेमस हो चुके हैं।
0: अच्छा, कैसे?
1: अलग अलग गांव में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमारे चरित्र को प्रस्तुत किया जा रहा है।
0: अच्छा, कहाँ?
1: चलो तुमको रामदेववाड़ी गांव की कहानी सुनाती हूँ। वहाँ पर नुक्कड़ नाटक के रूप में क्या प्रस्तुत हो रहा है वो सुनवाती हूँ। वहाँ पर एक नाटक हो रहा है जिसका नाम है दूषिका की हार, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की जीत।

कहते हैं जब बुराई बढ़ती है तो अच्छाई भी ताकत से खड़ी होती है। ये कहानी है रामदेवाड़ी गांव की, जहां स्वच्छता को गंदगी ने खुली चुनौती दी, जहां दूषिका ने फैलाया अंधेरा और स्वच्छिका ने जलाया स्वच्छता का दीपक, और सुजल कुमार बना उस रोशनी का स्वच्छता दूत। जानेंगे कैसे काम आई बुजुर्ग की नसीहत। आइए सुनते हैं दूषिका की हार, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की जीत।

0: आ गई वे दूषिका, गांव की नालियों और कूड़े में ढेर से निकाल कर, कभी निष्क्रिय शौचालयों में, कभी गंदे घरों में, मेरा साम्राज्य बढ़ता ही जा रहा है। जहां शौचालय बनते हैं, बनते तो है मगर लापरवाही करने से निष्क्रिय हो जाते हैं, वहीं तो बसती हूं मैं। जो कहते हैं कल करेंगे साफ, उनको जल्द से जल्द मैं कर देती हूँ बीमार। गंदा और निष्क्रिय शौचालय मेरा आशियाना, फैला हुआ गंदा पानी और टूटा नल मेरा ठिकाना, मेरा काम सबको बीमार बनाना।
1: घर में शौचालय तो है पर नल की टूटी खराब हुई है। कितनी बार रमेश के पिताजी को कहा बनवा दे लेकिन सुनते ही नहीं है। शौचालय ना हो पर तो क्या हमें फिर से खेती में जाएंगे? नहीं नहीं, हमारा गांव तो ODF है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
0: ये है मेरी एक और जीत।
2: हमारे कुछ शौचालय निष्क्रिय है और वे लोग उनको ठीक नहीं करवा रहे हैं। इस वजह से भी शायद पिछले महीने 4 बच्चे बीमार पड़े थे। सरपंच जी कुछ कीजिए।
3: गांव वाले गांव में गंदगी भी फैला रहे हैं और गांव में लगाना कूड़ेदान का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।
4: घर में जगह होने के बाद भी घरों के गंदे पानी से गांव में जल भराव कर रहे हैं।
0: बस ऐसे ही रहो, मुझे तुम सबका लापरवाह रवैया बहुत पसंद है। तुम खुद शौचालय साफ नहीं रखते, उनके रखरखाव का ध्यान नहीं रखते और गांव में कूड़ा इधर उधर फेंकते हो, कूड़ा दान का भी प्रयोग नहीं करते।
2: एक दिन गांव एक युवा आत्मविश्वास से भरपूर, आंखों में एक भारत के निर्माण का सपना लिए सुजल कुमार अपने पड़ोस के गांव जाता है।
3: राम राम भैया, ये गांव में चारों ओर सन्नाटा क्यों है भाई? सब इतने दुखी क्यों हैं और इतनी गंदगी क्यों है भाई?
4: कौन है जी, कौन है पता नहीं। हाँ कौन है पता नहीं, मुझे क्या पता कौन है, कौन बोल रहा है? लगता है जैसे इनको तो कुछ पता ही नहीं। हाँ नहीं तो सच कह रही हो बहन, बन तो ऐसे रहा है जैसे इसको तो कुछ पता ही नहीं है।
3: सब समझ गया चाची, सब समझ गया मैं। इस गांव में ये दुख और सन्नाटे का कारण है अस्वच्छता।
0: मैं हूँ इन सब का कारण, बोलो क्या करोगे तुम? बोलो बोलो। हाँ कुछ नहीं कर पाओगे तुम, कुछ दिन में तो तुम्हें भी अपना शिकार बना लूंगी, समझे?
3: अच्छा तो तुम हो दूषिका और ये सब तुम्हारी किया धरा है। अब मैं सब समझ गया, देखो मैं कुछ ही दिनों में तुम्हारा कैसे सफाया करता हूँ।
0: मेरा सफाया? मेरा सफाया क्यों करोगे? मैं तो उन गांव वालों को निशाना बनाती हूँ जो गंदगी फैलाते हैं, जो अपने शौचालयों का रखरखाव नहीं रखते, गीले कचरे सूखे कचरे के बीच अंतर नहीं जानते, जो ये भी नहीं जानते कि जैविक कचरा यानी घर की रसोई से निकलने वाले कचरे को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। ऐसे सभी लोग पर मैं राज करती हूँ, उनका यही लापरवाही मेरी जीत है। लेकिन जनता को स्वच्छता के बारे में समझाने का काम तो तुम्हारा है सुजल।
3: दूषिका तुम गलत हो, यह काम अभी भी हो रहे हैं और हमारे गांव की जनता को समझा है। वह स्वच्छता को कायम रखने के लिए, शौचालय के रखरखाव, गांव की स्वच्छता के लिए, गीले सूखे कचरे के लिए अलग अलग डस्टबिन का उपयोग कर रहे हैं। इसके लिए सरकार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत जागरूकता अभियान भी समय समय कराती ही रहती है। हाँ, सब्जी प्रदूषिका
0: हाँ, समय के साथ जनता जागरूक होती जा रही है, लेकिन गंदला पानी तथा मलिय कचरा प्रबंधन को व्यापक रूप से अपनाने में अभी काफी समय लगेगा।
4: दूषिका, गंदला जल प्रबंधन और गलीय कचरा प्रबंधन भी सभी गांव में विभिन्न माध्यम जैसे सोखता गड्ढा घर और सामुदायिक स्तर पर वेस्ट स्टेबिलाईजेशन पॉन्ड, डीवेट्स और फेकल स्लश ट्रीटमेंट प्लांट जैसे संरचनाओं के से की जा रही है। इसके बारे में विस्तार से बताऊंगी। देखना आने वाले दिनों में गांव की जनता कैसे तुम्हारा नामो निशान मिटा देगी।
1: सुजल और वे स्वच्छता पर नुक्कड़ नाटक करता है, बच्चों को खेल खेल में सिखाता है, बूढ़ों से मिलता समझाता है। शौचालय सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, ये हमारी माताओं बहनों बेटियों की गरिमा है। यह हमें बीमारी से अस्वच्छता से बचाता है। ये है बीमारी से लड़ने का हथियार। अपने घरों के शौचालयों का रखरखाव और उनकी सफाई करना, मरम्मत करना घर वालों की जिम्मेदारी है। गांव को स्वच्छ रखने के लिए सही कचरा प्रबंधन और गंदला जल का निपटान भी हमारी सामूहिक जिम्मेवारी है। खुद भी स्वस्थ रहो और दूसरों को भी स्वच्छ रहने के लिए स्वच्छता के प्रति जागरूक करो। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग प्रेरित होते हैं और शौचालय की नियमित सफाई शुरू करते हैं और गांव के लोग एकजुट होके सामुदायिक शौचालयों का भी रखरखाव शुरू करते हैं। इसी के साथ सुजल उनको सूखा कचरा प्रबंधन और गंदला जल प्रबंधन का अच्छा प्रभाव भी दिखाता है, जैसा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में सिखाया गया था। लोग इस दिशा में काम करने लगे। दूषिका बेचैन होती है, गांव की गली में छिपकर देखती है।
0: अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? लोगों ने नालियां साफ कर दी है क्या? ये शौचालय का नल भी ठीक हो गया? दुर्गंध कहाँ गई? मच्छर कहाँ गए? गंदला जल नहीं फैला? अरे अरे अरे अरे, ये गांव में सब ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है?
1: अब गांव में आती है उजली सी रोशनी के साथ स्वच्छिका।
4: गांववासियों, तुम्हारी जागरूकता ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, जहाँ शौचालय का निरंतर उपयोग और सही तरीके से रखरखाव होता है, जहाँ जैविक सूखे और प्लास्टिक कचरे का सही प्रबंधन होता है, वही रहती हूँ मैं स्वच्छिका।
1: अब गांव में हर घर हर गली में स्वच्छता का जन आंदोलन फिर से खड़ा हुआ है।

0: अब हम चलते हैं अपने उस सेगमेंट की ओर जहां पर श्रोता साथियों के नाम होते हैं, प्रश्न हमारे उनके जवाब होते हैं। तो पिछले एपिसोड में यानी एपिसोड नंबर 1 में हमने स्वच्छ गांव के लिए कोई बढ़िया सा स्लोगन हमने भेजने को तो कहा था।
1: तो क्या कुछ अच्छे स्लोगन आए हैं?
0: बिल्कुल आए हैं स्वच्छिका, और उसमें से हमने 3 अच्छे स्लोगन छाट भी लिए हैं। सुनते हैं उन श्रोता के नाम और उनके भेजे गए स्लोगन। करण पाटिल जो कि जलगांव के ग्रामीण भाग से है, उन्होंने पहला उनका स्लोगन है स्वच्छ गांव स्वच्छ जीवन, यही है खुशहाली का सच्चा कारण।
1: वाह वाह।
0: और दूसरा जो स्लोगन है वो भेजा है प्राजक्ता बहिरम ने, और वो अमल ने ऐसे लिखती है और स्लोगन है घर घर का हो एक ही नारा, स्वच्छ और सुंदर हो गांव हमारा।
1: क्या बात है।
0: और तीसरा स्लोगन है जो कि है ग्रीष्मा पाठक नशीराबाद से, उन्होंने भेजा है कचरा डिब्बे में डाले सभी, स्वच्छ गांव की जिम्मेदारी निभाए सभी।
1: क्या बात है, बहुत ही अच्छे। वाह, ये तो बड़ा अच्छे अच्छे स्लोगन लिखकर भेजे हैं। हमारे श्रोताओं को बधाई और धन्यवाद।
0: और अब इस अंक का सवाल, गीला कचरा और सूखा कचरा की श्रेणी में किन किन चीजों को रखा जाता है और उन्हें रखने के लिए किस रंग के कूड़ेदान होते हैं?
1: तो भेजिए जल्दी से जवाब। सही जवाब भेजने वालों के नाम शामिल होंगे अगले अंक में। हमारा नंबर है 9284994433।
0: चलने का वक्त हो गया है, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ और भी बताएंगे। और वह आप जानते हैं कि हम आपको क्या बताएंगे। आज आप सुन रहे हैं स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड। आज के इस एपिसोड में हमने चर्चा की है कि हम अपने शौचालय का रखरखाव और उसकी साफ सफाई कैसे रखेंगे, ठोस और तरल अपरिष्ट प्रबंधन क्यों जरूरी है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रम और अब तक हुई प्रगति की झलक।
1: और अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे हर घर जल कार्यक्रम और अब तक हुई प्रगति की झलक के संदर्भ में जानकारी।
0: क्या आप जानते हैं कि जल जीवन मिशन में जल उत्सव या जल अर्पण दिवस क्या होता है? इस जानकारी के साथ ही जल जीवन मिशन के जारी होने से पहले लॉन्च और अब तक के कवरेज सहित मिशन के बारे में, नल जल कलेक्शन की उपलब्धियां, जल परीक्षण में महिलाओं की भूमिका, मिशन के घटक आदि के बारे में अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे।
1: अब आप अपने प्रश्न का जवाब हमको भेजिए। अपने गांव में शौचालय के रखरखाव पर के प्रति नजर रखिए, लोगों को बताइए खुश रहिए स्वच्छ रहिए, प्लास्टिक के थैले को उपयोग न करें, यत्र तत्र कूड़ा न फेंके, कूड़ा कूड़ेदान में डाले, स्वच्छता फैलाइए और अपने देश को स्वच्छ बनाइए, स्वच्छ भारत सुंदर भारत।
0: कार्यक्रम के अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक सुनते रहिए आपका अपना पसंदीदा रेडियो, रेडियो मनभावन 90.8 FM। फिलहाल स्वच्छिका और सुजल को अनुमति दीजिए।
1: नमस्कार।

नमस्कार मित्रों, मैं हूं मनोज और स्वागत है आपका 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। इस नए वर्ष में एक कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं जिसका शीर्षक है सुनो भाई साधो। इसमें कबीर के दोहों पर व्याख्या की जाएगी। सबसे पहले कबीर की आज के समय में क्या प्रासंगिकता है उसको हम देखेंगे। आज की इस शोर भरी दुनिया में जहाँ हर कोई चिल्ला रहा है पर कोई सुन नहीं रहा, जहाँ धर्म जाति और विचारधाराओं की ऊंची दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, वहाँ एक आवाज़ 500 सालों से गूंज रही है। एक ऐसी आवाज़ जो न डराती हैं न बहलाती हैं बल्कि सीधा आईना दिखाती हैं। वो आवाज़ है काशी के उस फकीर की जिसे दुनिया संत कबीर के नाम से जानती है। दोस्तों, कबीर कोई महलों में रहने वाले दार्शनिक नहीं थे, वे एक जुलाह थे, कपड़ा बुनना उनकी आजीविका थी, लेकिन सत्य को बुनना उनकी साधना। उनका संघर्ष केवल गरीबी से नहीं था बल्कि उस दौर के पाखंड से था। कल्पना कीजिए उस समय की काशी की, जहां एक तरफ पंडितों का वर्चस्व था और दूसरी तरफ मुल्ला।

से निकालने की कोशिश हुई, लेकिन कबीर का संघर्ष थमा नहीं, क्योंकि उनका संघर्ष किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि इंसानियत के पक्ष में था। अब आप सोचेंगे कि आज 2026 में हम 500 साल पुराने कबीर की बात क्यों कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि जो बीमारियां तब थी वो आज भी हैं, सिर्फ उनके चेहरे बदल गए हैं। नफरत, दिखावा, कट्टरता और अहंकार। कबीर एक सामाजिक डॉक्टर थे। जैसे एक डॉक्टर बीमारी का इलाज करने के लिए खुद बीमार नहीं होता, वैसे ही कबीर समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए उन बुराइयों का हिस्सा नहीं बने। उन्होंने समाज की नब्ज पकड़ी और बताया कि जब तक पवित्रता का चश्मा पहनकर दूसरों को अपवित्र कहते रहेंगे, तब तक हम इंसान नहीं बन पाएंगे। कबीर का एक दोहा हम उदाहरण के लिए देखेंगे।

0: बैल।
1: इस दोहे से हमें ज्ञात करते हैं कि कबीर किस प्रकार की विचारधारा को समाज को रचने की कोशिश कर रहे थे। इस छोटे से दोहे में कबीर ने जीवन का सबसे बड़ा मैनेजमेंट गुरु मंत्र दिया है। बाजार में खड़ा होना से तात्पर्य है, कबीर कहते हैं कि सत्य की तलाश हिमालय की गुफाओं में नहीं, बल्कि इस दुनिया के बाजार अर्थात भीड़ के बीच में है। हमें भागना नहीं है, इसी दुनिया में रहकर काम करना है। मांगे सबकी खैर का अर्थ है कि कबीर का कोई धर्म नहीं था, इसलिए वे सबकी भलाई मांग सकें। उनका प्रेम पक्षपाती नहीं था, ना काहूं से दोस्ती ना काहूं से बैर, यह सबसे क्रांतिकारी बात है। अक्सर दोस्ती हमें सच बोलने से रोकती हैं और दुश्मनी हमें अंधा कर देती हैं। कबीर कहते हैं कि इतना तटस्थ हो जाओ कि सच को सच कह सको, यह वही साधारणीकरण है जिसके बारे में हमारे दार्शनिक बात करते हैं कि अपने स्व के ऊपर उठकर पूरी दुनिया को एक समान देखना चाहिए। कबीर की देन यह है कि उन्होंने हमें स्वतंत्र होकर सोचना सिखाया। उन्होंने हमें सिखाया कि सवाल पूछना ही धर्म है। आज के इस पहले एपिसोड में बस इतना ही। कल हम कबीर के उस क्रांतिकारी विचार पर बात करेंगे जहां वे कहते हैं कि ईश्वर सातवें आसमान पर नहीं, आपके और मेरे भीतर बैठा है। चलते चलते बस इतना ही कहूँगा, आज किसी को धर्म या जाति की नज़र से नहीं, बस इंसान की नज़र से देखिएगा, शायद आपको वहीं कबीर मिल जाए। सुनते रहिए रेडियो मनभावन 90.8 FM, आपका दोस्त मनोज के साथ। धन्यवाद।

76 बा तथागता आर्य अष्टांगिक मार्ग का दूसरा मार्ग तूने दिखा दिया। सम्यक संकल्प, संकल्प यह दृढ़ नैतिक होते हैं, धीरोदात्त होते हैं, उनमें मूलभूत तत्व निहित होता है और सैद्धांतिकी भी। संपूर्ण विश्व का भार इन मूलभूत तत्वों

पर अवलंबित होता है। मानवीय संकल्पनाओं की दिशा इन्हीं संकल्पनाओं से आकार धारण कर लेती है। संकल्पनाओं की विचारों का अधिष्ठान होता है, फिर आचरण घटित होता है अपने आप योग्य मार्ग से। संकल्प होता है भले विचारों का, बुरे विचारों को स्थान नहीं मिलता संकल्पना में। इसलिए संकल्पना का विकास यानी गति प्रगति की खोज, संकल्पना की आवश्यकता यानी दृढ़ निश्चय, संकल्पना की यात्रा यानी कार्य पूर्ति की सूचना। संकल्प होता है कसम लेने समान, दृढ़ता पूर्वक कार्य सिद्धि पूर्ति कारण। अच्छी बातों को उजागर करने, समाजाभिमुख निर्णय घोषित करने, ध्येय प्राप्ति की ओर कदम बढ़ाने, सकारात्मक उद्दिष्ट पूर्ण करने, इनके लिए होता है संकल्प। सम्यक संकल्पना का महत्व सम्यक दृष्टि के मनुष्य ने निश्चित करना चाहिए, तब उससे विकसित होगी मानवीय संस्कार और मानव समूह की विवेकनिष्ठ संस्कृति। संकल्प कीजिए आसक्ति और द्वेष त्यागने, प्रतिहिंसा टालने यानी शुद्धत्व को अधिक परिशुद्ध बनाने, नाम रूपों में अंतर्भूत अनात्मा के समक्ष जानिए दुख का अनित्य भाव, तब प्रज्ञा के प्रभाव से निष्क्रमण दृढ़ हो जाएगा। बात तथागता आर्य अष्टांगिक मार्ग का तीसरा मार्ग तूने दिखा दिया, सम्यक वाचा। नीतिमान मनुष्य ने नित्य ही सत्यवद असत्य ना बोले, सत्य बोलने वाला मनुष्य ही संस्कारक्षम और नीति परायण होता है। असत्य बोलने वालों का कभी भी नहीं होता संबंध नैतिक धर्म से। दूसरों के बारे में गलत बोलना यह प्रवृत्ति ठीक नहीं। सम्यक वाचा इस संकल्पना से ही विकास मानवता का हो, इसलिए व्रत पालन जरूरी है कि दूसरों के संबंध में बुराई ना करें तथा न करें निंदा दूसरों की। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, प्रेम जताना सबके प्रति, न गाली गलौज न अनुचित भाषा का प्रयोग। सम्यक वाचा का तत्व सभी ने अपनाना और अपनत्व से अपनों से सौजन्य दिखाना। मनुष्य की अर्थहीन बकवास यह सम्यक वाचा नहीं है, अर्थहीन बकबक मूर्खता है। तब कहना हो अर्थपूर्ण आशय युक्त, शैली अभिव्यक्ति की सामंजस्यपूर्ण हो भूमिका, जिससे मनुष्य के संस्कारों की दृष्टि वृद्धिगत होगी। सम्यक वाचा का अनुपालन करते समय अपने आंतरिक मन में बदलाव अपेक्षित है। किसी के दबाव के कारण न करना अनुपालन सम्यक वाचा का, या किसी के भय के कारण, या किसी पक्षपात से सम्यक वाचा न होने पर क्या हानि होगी अपनी, या सम्यक वाचा न होने पर क्या लगेगा दूसरों को या अपनों से वरिष्ठ जनों को। इस प्रकार की भावना यानी सम्यक वाचा से दूर जाना है। वैयक्तिक लाभ अथवा वरिष्ठों की आज्ञा का पालन यह प्रमाण नहीं है सम्यक वाचा का। कोई भी बाह्य अनुभूति, बाह्य परिणाम, बाह्य प्रमाण सम्यक वाचा के लिए नहीं होते उपयुक्त। अभिव्यक्ति का आंतरिक बदलाव, भाषा अभिव्यक्ति का लहजा, सामंजस्यपूर्ण शैली, शब्द उच्चारण का स्तर सम्यक वाचा में समाहित होता है।

नमस्कार, ओम शांति। विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, इसके ऊपर हमारी चर्चा शुरू थी। हमने विश्व के बारे में चिंतन किया, स्वधर्म के बारे में चिंतन किया और पिछले एपिसोड में सूर्य के बारे में भी चिंतन किया। हमने ये देखा कि मावली को सूर्य अभिप्रेत था। यह ग्रह सूर्य जो शब्द का प्रयोग किया है वह सिर्फ लिमिटेड है सूर्य ग्रह के हिसाब से या और कुछ अलग है, इसके ऊपर भी हमने चिंतन किया। अभी हम उसको तीनों को जोड़ेंगे, सूर्य को देखा, स्वधर्म को देखा, विश्व को देखा। अभी विश्व स्वधर्म सूर्य तीनों को अगर जोड़ के देखेंगे तो हमें और उस गहनता तक जाने के लिए मदद मिलेगी। देखिए, सूर्य जो है ग्रह माले का जो सोलर सिस्टम है उसमें से ग्रह सूर्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज इट गिव्स एनर्जी टू एवरीबॉडी। कंटिन्यूअस एनर्जी उससे मिलती है, उसके सोलर एनर्जी बोलते हैं, और इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं रहता। भले हम सन कहेंगे, सूरज कहेंगे, सूर्य कहेंगे और कोई भाषा में और कुछ कहेंगे, लेकिन उससे कोई ये मेरा सूरज है, ये आपका सूरज है, ये मेरा सन है, ऐसा कभी डिस्प्यूट सुना है हमने? नहीं है। सूरज जो है उससे एनर्जी हर कोई लेता है एंड एवरीबडी इज हैप्पी। भले किसी से ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं, भारतीय संस्कृति में सूरज को भगवान का रूप दिया गया है और सूरज को इसलिए भगवान मानते हैं। अभी ये सूरज जो है उसे भगवान मानते हैं, लेकिन सचमुच ही भगवान है या भगवान कोई और कोई है? सूरज की उपमा दी है क्योंकि जैसे सूरज सर्व ग्रहों में श्रेष्ठ है वैसे भगवान भी सबसे ऊंचा है, इसलिए ऊपर वाला सर्वशक्तिमान कहते हैं उनसे। और मुझे लगता है मावली ने जो सूर्य का शब्द प्रयोग किया है उसके पीछे यही राज है। उनको सूरज जो अभिप्रेत है, विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, ये सूर्य जो है वो भगवान के बारे में, वो भगवान को देखते हैं और वो अभिप्रेत है उनको। अभी अगर सूर्य सूरज इक्वल टू भगवान और भगवान इक्वल टू सूरज और भगवान का नाम ही सूरज, ऐसे अगर विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो में है तो अभी पूरा का पूरा अर्थ देख लीजिए। विश्व, सारे विश्व में भगवान के अलग अलग रूप है, भगवान की अलग अलग मान्यताएं है, नाम अलग अलग है, पहचान अलग अलग है, और शायद सही पहचान न होने के कारण या अलग अलग पहचान होने के कारण या उसके जो कर्म है वो अलग अलग होने के कारण या उसका जो कार्य है उसका पूरा पूरा ज्ञान न होने के कारण शायद हमारे में लड़ाई है, झगड़ा है। ये हमारा भगवान है, ये आपका भगवान है, और ऐसे नहीं कि सिर्फ चार धर्म जो है मेन मुख्य धर्म जो मानते हैं हम चार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसमें भगवान अलग है, ऐसे नहीं है। अभी हिंदुओं में भी इतने देवताएं हैं, फिर भगवान क्या है, देवता क्या है, ये भी कंफ्यूजन है। और इसलिए सूर्य जो है, सूर्य के बारे में कभी कंफ्यूजन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भगवान के बारे में है। अगर भगवान इक्वल टू सूरज और सूरज इक्वल टू भगवान ये हम सोचते हैं तो विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो। शायद मुझे ऐसे लगता है मावली को ये अभिप्रेत है कि अगर जिस दिन सारा विश्व
अपने स्वधर्म में स्थित, स्वधर्म मीन्स आत्मा का धर्म, शांति का धर्म। आत्मा का धर्म है शांति, पिछले एपिसोड में हमने देखा था। तो आत्मिक स्थिति में सारा विश्व अगर स्थित हो जाता है और सूर्य जो है, भगवान जो है, उनको देखता है, तो भगवान का सही ज्ञान सबको हो जाता है। विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, और ये रिक्वेस्ट या ये विजन एक दिन ऐसे आएगा। माउली को भी लगता है कि सारा विश्व जो है, हम सिर्फ कहते हैं गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ, सत्य, सत्यमेव जयते, भगवान की विजय होगी, अंतिम विजय भगवान की होगी। अगर भगवान सत्य है, गॉड इज ट्रुथ, ये सही है, तो विजय किसकी होगी? अंतिम भगवान की होगी। और यही विजय जो है, और इसलिए देखिए सत्य युग कहा जाता है, भगवान को सत्य कहते हैं और युग को भी सत्य कहते हैं। और पांडव देखिए, पांडव में भले ही उनका जो श्रेष्ठ था, पांडव में बड़ा दादा, उसका नाम था युधिष्ठिर, लेकिन उनको भी कहते हैं धर्मराज। तो ये धर्म हो या सत्य हो या भगवान हो, उनकी विजय होगी, मीन्स जो अच्छाई की बुराई पर विजय होगी। और ये स्वधर्मे, विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, सारा विश्व जो एक मुख से अगर भगवान को पहचान लेगा, ज्ञान भगवान के बारे में मिलेगा, तो क्या होगा? बुराई रहेगी नहीं, कोई लड़ाई नहीं रहेगी, कोई दुराचार नहीं रहेगा, कोई अशांति नहीं रहेगी, और सब अपने शांत स्वभाव में, शांति के धर्म में स्थित हो जाएंगे। तो सबके विचार क्या होंगे? विचार भी एक होंगे, और इसलिए बोलते हैं एक विचार तो एक आचार हो जाएगा, एक उच्चार हो जाएगा, और सब जहां एक होते हैं, यूनिटी। जब यूनिटी हो जाती है, तब हर चीज आसान हो जाती है, और विश्व परिवर्तन जो है वो भी आसान हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा था, माउली का जो पसायदान है, उसमें जो रोड मैप है या रिक्वेस्ट है, तो ये रोड मैप यहां पूरा हो जाता है। सब्जेक्ट टू कंडीशंस, क्या क्या है? आता विश्वात्मके देवे, उन्होंने विश्वात्मक देव को बताया, मांगा, येने वाग यज्ञ तोषावे, मेरे वाग यज्ञ जो है उससे आप संतुष्ट हो जाओ, और मुझे पसाय दान दो, मुझे दान दो, मुझे क्या दो? ब्लेसिंग्स दो, मुझे आशीर्वाद दो। आता विश्वात्मके देवे, येने वाग यज्ञ तोषावे, तोषो निमज द्यावे पसाय दाने, जे खळांची व्यंकटी सांडू, तया सत्कर्मी रती वाढू, भूता परस्परे जडो मैत्र जीवांचे। ये भी देखा हमने। फिर दुरितांचे तिमिर जावो, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो। ये जब हो जाएगा, तब स्वर्ग आ जाएगा, सतयुग आ जाएगा। और ये सतयुग कैसा है, उसका वर्णन अगले कड़ी में। तो ये जो ओवी है, विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, उसके ऊपर जब चिंतन करेंगे, तब लगता है, मुझे लगता है कि ये कंडीशन हो जाएगी। विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, सब एक रूप हो जाएंगे, एक मुख से बोलने लगेंगे, तो आगे क्या होगा? जो जे वांछील तो तेला हो प्राणी जात। आजकल हम बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन सब होता नहीं है। हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, क्योंकि शायद ऐसे कहते हैं कि आपकी इच्छा आपको अच्छा नहीं बना देती। और जब मुझे पूरा ज्ञान हो जाता है, परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, तो कोई इच्छा ही नहीं रहती और सब अच्छा हो जाता है। इसलिए जो जे वांछील तो तेला हो प्राणी जात, क्योंकि इच्छा ही अच्छी होगी।
आजकल हमारी इच्छाएं अच्छी होगी उसकी गारंटी नहीं है, इसलिए कभी होती है पूर्ण या कभी नहीं होती है। लेकिन वो स्टेज जो माउली को अभिप्रेत है, जब विश्व स्वधर्म में, सारा विश्व अपने स्वधर्म में स्थित होके सूरज को देखने लगेगा, पहचानने लगेगा, तब जो मन में इच्छा है, जो जे वांछील तो तेला हो प्राणी जात, ये पूर्ण हो जाएगा। और फिर कैसे होगा, ये स्वर्ग का रोड मैप कैसे होगा, स्वर्ग का दर्शन कैसे होगा, वो अगले कड़ी में हम देखेंगे। तो यहां अपनी चर्चा हम पूरी करेंगे, विश्व स्वधर में सूर्य पाहो, और अगले कड़ी में अगले चरण के ऊपर चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम शांति।

नमस्कार, ओम शांती। दुरितांचे तिमिर जाव, विश्वस्व धर्म सूर्य पाहो, जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणीजात। जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणीजात, यहां तक आ गए और हमने ये देखा कि जो जो प्राणी मात्र को ये पृथ्वी पे धरा पे जो कोई प्राणी है, उनके मन में जो कोई आशा है, इच्छा है, यह सफल होने दो, ऐसे माउली ने मांगा। तो अगर हर किसी की इच्छा पूरी हो जाएगी, संभव है? संभव है, क्योंकि वो इच्छा ही अच्छी होगी, बुरी इच्छा होगी ही नहीं। क्यों क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसके पीछे जाएंगे तो विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो। सारा विश्व अगर एक ही सूरज को देखता है, एक ही भगवान को देखता है और भगवान में स्वधर्म से, आत्मिक स्थिति से देखता है, तो बुरी इच्छा या बुरा विचार, बुरा संकल्प मन में आने की संभावना है ही नहीं। और इसलिए माउली ने कहा, जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणी जात। मेरे बहुत सारे मित्र जो है वो कहते हैं कि ये 9 ओवी है, उसमें से तो इतने कम शब्दों में, ज्यादा से ज्यादा 8-9 एपिसोड में उसका पूरा अर्थ पूरा हो जाएगा। ये जो अर्थ निकलता है ये कहां से है? एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि कवि जो रहता है, एक आधा कवि रहता है, उसका काव्य है, उसका जब रस ग्रहण होता है तो ऊपर ऊपर से शब्द देखेंगे तो अर्थ अलग रहता है, और जब उसका रस ग्रहण करने लगते हैं तो अर्थ अलग निकल जाता है। और इसलिए कहते हैं, जे न देखे रवि ते देखे कवि। और उसके आगे बढ़ के ऐसे ही कहा जाता है, और जो जे न देखे कवि ते देखे अनुभवी। योगीराज थे, माहौली योगीराज थे, और उन्होंने कुछ योग साधना करते समय अनुभव किया होगा, कुछ विजन लिया होगा, और ये विजन उन्होंने प्रत्यक्ष किया, और ये विजन लेने के साथ साथ उन्होंने विश्वात्मक देव परमात्मा से प्रार्थना की। इसको डिकोडिंग भी कहा जाता है। देखिए, पहले जमाने में टेलीग्राम रहता था, कट्ट कड़ रहता था ना, उसमें क्या कट्ट कड़ करते हैं कुछ पता नहीं चलता था, लेकिन उसका जब वाक्य तैयार हो जाता था, पंक्ति तैयार हो जाती थी, सेंटेंस तैयार हो जाता था, तो मैसेज आता था। बाद में टेलेक्स आ गया। मेरे कई सारे मित्र जो है OCS VSNL के, वो समझते होंगे कि वो टेलेक्स में कागज की पट्टी रहती थी और उसमें बहुत सारे छिद्र थे, होल्स थे, और होल्स की पोजीशन, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशन देखने के बाद वो पढ़ सकते थे कि ये मैसेज क्या है, तो मैसेज है कि नहीं। ऊपर से देखेंगे तो कागज की पट्टी है, लेकिन जब खुल के देखेंगे, सोच के देखेंगे, तो उससे मैसेज निकलता है। वैसे ये पसायदान है माउली का, ऊपर से तो 9 ओवी है, और अंदर जाके झांक के देखेंगे तो खजाना है, और ये खजाना खोलने का प्रयास को रिस्पॉन्ड है। और इसलिए मेरा कहना यह है कि ये जो जोजे वांछील तो ते लाहो प्राणी जात, यहां टर्निंग पॉइंट है। अब तक माउली ने एक्सप्लेन किया, बैकग्राउंड तैयार की, लेकिन जैसे मैंने कहा था, माउली का जो विजन है स्वर्ग का, ये स्वर्ग कैसा है, कैसा आएगा, उसका रोड मैप क्या है, वो अभी आगे के चरणों में अपने को दिखेगा, हम देख सकेंगे उसको। तो ये रोड मैप जो है, स्वर्ग जो है, जैसे पिछले एपिसोड में भी हमने डिस्कस किया था, सचमुच स्वर्ग आएगा? ? क्योंकि स्वर्ग क्या है, स्वर्ग है या नहीं है, इसमें ही बड़ा डिस्प्यूट है। लोग बोलते हैं कि स्वर्ग है ही नहीं,
क्योंकि स्वर्ग में जो जाता है तो पीछे वापस नहीं आता बोलने के लिए कि स्वर्ग क्या है, ऐसी मान्यता है। अगर ऐसा है तो यह स्वर्ग की संकल्पना कहां से आई? ये गाने जो लिखे थे चित्रपट में, पिक्चर्स में, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी वसेरा, वो भारत देश मेरा, वो कहां से आया? संकल्पना कहां से आई? ये कवि के मन में जो विचार है वो कहां से आया? स्वर्ग में जो सुख था, आनंद था, वो जो संकल्पना है, आनंद है, सुख है, वो कहां से आई? यही भारतवर्ष है, और इसलिए भारतवर्ष को सोने की नगरी कहते हैं, सोने की चिड़िया कहते हैं। और मजे की बात देखो, है दोनों सोने के, द्वारका भी सोने की है और लंका भी सोने की है, ऐसे मानते हैं। लेकिन लंका जलाते हैं और द्वारका डूब गई, तो यह द्वारका क्या है और लंका क्या है ये भी देखना है। तो यह स्वर्ग जो रोड मैप है, स्वर्ग में हर कोई सुख और शांति से जीता है, एक ही धर्म है, एक ही भाषा है और मनुष्य देवता स्वरूप है। इसलिए कहते हैं कि सनातन धर्म कहते हैं सबसे पहला, क्योंकि हिंदू धर्म की स्थापना भी किसने की हमें मालूम नहीं है। शंकराचार्य जी ने उसका पुनरुज्जीवन किया, लेकिन स्थापना किसने की? और उसके पहले सनातन धर्म कहते हैं, और उससे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये देवता जो थे, 33 करोड़ देवता जो है, कौन है? और माउली ने वो देवताओं का ही वर्णन अगले चरणों में किया है। और देवता बनने की पहली स्टेज है एंजेलिक, फरिश्ता। ये जब स्टेज बनेगी तब देवता बन जाएंगे। और इसलिए देखिए, हमारे यहां जो कहावतें हैं, वाक् प्रचार है, उसके पीछे कुछ ना कुछ सत्य है, ऐसे नहीं वाक् प्रचार आते हैं। इसलिए हम कहते हैं देवताएं वाम मार्ग में चली गई, पहले देवताएं थी, देवताएं वाम मार्ग में चली गई, देवताएं भ्रष्ट हो गई, पहले नहीं थी भ्रष्ट, पहले अच्छी थी, बाद में भ्रष्ट हो गई। देवताएं कैसे भ्रष्ट हो सकती है? हमेशा मन में, हर किसी के मन में, दिल में, आत्मा में सत्व गुण, देवताओं का गुण और सुर और असुर दोनों गुण है। जो प्रभावशाली होता है उसके हिसाब से वातावरण निर्मित होती है, और यह संकल्प जो है, यह संकल्प इस वातावरण को श्रेष्ठ या शुद्ध बना सकते हैं या बुरा भी बना सकते हैं। तो विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, सारा विश्व जब एक ही संकल्प में स्थित हो जाएगा और एक संकल्प आएगा कि अभी बहुत हो गया, अभी उसमें परिवर्तन चाहिए, अच्छे दिन आने चाहिए, तो ये विश्व का परिवर्तन हो जाएगा। और ये परिवर्तन होते समय अवस्था कैसी होगी, ये अगले चरणों में माउली ने रोड मैप दिया है, उसके ऊपर भी हम उसका चिंतन करेंगे। तो शुरुआत में जैसे शुरुआत हो गई, आता विश्वात्म के देवे,

येणी वाघी यज्ञ तोषावे तो शौनी मज द्यावे पसायदा नये जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो भूता परस्परे जडो मैत्र जीवांचे दुरितांचे तिमिर जावो विश्वस्व धर्म सूर्य पाहो जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणीजात। पूरी जो संकल्पना है, एक ही संकल्प जो है, अच्छा ये सृष्टि का परिवर्तन हो, इस धरा पे, इस भारत वर्ष पे स्वर्ग का अवतरण हो, ये संकल्प मन में, एक ही संकल्प आता है। उसका उदाहरण मुझे याद आता है, आळंदी में ऐसे कहते हैं, बीच में जी मराठी न्यूज में भी दिखाया था, आळंदी में ऐसे कहते हैं कि ज्ञानदेव की जो पालखी है वो उठाते हैं तब ऊपर का जो कलश बोलते हैं, टॉप मंदिर में जो टॉप रहता है वो कलश जो है वो हिलता है, ऐसी मान्यता है, मैंने भी देखा था। अभी ये मान्यता है कलश जो है वो फिक्स है, कैसे हिलेगा, लेकिन हिलता है, और वो हिलता है वो उसका फोटोग्राफ और वीडियो क्लिप भी दिखाई थे न्यूज में। मुझे ये लगता है कि जब 8-9 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं और जब पालकी उठाते हैं और उनके मन में संकल्प आता है कि ये अभी हिलेगा, एक ही संकल्प एक ही समय आ गया तो जो निर्जीव चीज है वो भी हिलेगी, और यहां तो वातावरण है, तो वातावरण बदल करने की, परिवर्तन लाने की सृष्टि में शक्ति हमारे संकल्प में है। और यही संकल्प कैसे है, ज्ञानदेव जी ने, मौली ने अगले चरणों में दिखाया है, उसका हम चिंतन करेंगे, वर्णन करेंगे, पठन करेंगे, अध्ययन करेंगे और उसका आनंद भी लेंगे। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, ओम।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आप सबका स्वागत। लाइफ स्किल्स, कितनी तरह के स्किल्स हम सीख चुके थे, लाइफ को ही नहीं जान पा रहे थे। अब वो स्किल्स भी सीख रहे हैं, ज्ञान के आधार पर देख रहे हैं कि कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिन्हें हम सीखते जाएंगे। जिंदगी बहुत सुंदर होती जा रही है और अनुभव से बड़ा जो कहते हैं कि सच कोई और नहीं होता, तो जब हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, अनुभव होता है, तब हमारे लिए वो सच बन जाता है। आज भी बात को कुछ और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं दिन भर में हम ऐसा क्या कर रहे होते हैं कि दिन जो है वो कम पड़ने लगता है। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का स्वागत है। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, बहुत सी बातें हमने सीखी। अब ये लगता है कि दिन छोटा है, इतनी सारी चीजें हैं, काम है, बहुत कुछ और मैनेज करना है, लाइफ को मैनेज करना है। अब हम स्टूडेंट बनके स्किल्स भी सीख रहे हैं ये इस पूरे श्रृंखला के अंदर अंदर कि कैसे हमने अभी तक गलतियां की थी उन्हें ठीक करें। लेकिन टाइम जो है वो मतलब दौड़ जाता है, भागता है। टाइम मैनेजमेंट की वर्कशॉप्स भी की हैं, सेमिनार्स अटेंड किए, नहीं होता। कहाँ गलत हो रहे हैं हम समय को समझने में, उसे मैनेज करने में?
2: सबसे जो फाउंडेशन इनफैक्ट यही है कि भी सवेरे जल्दी उठो तो आपके पास वह 2-3 घंटे और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और तब एक तो जल्दी उठो सवेरे, और वह जिसको कहते हैं अधिकतर 90% का वही पीक टाइम होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। आपने स्नान आदि किया, तैयार हो गए, उस समय जो सबसे डिफिकल्ट काम है वह करो।
0: लेकिन उस वक्त तो जब हम अपने आप को उठाते हैं हम इतने हैवी हुए हुए होते हैं।
2: विशेष सर्कल आपने खुद क्रिएट किया कि भाई टेंशन में सारा दिन बिताया, लेट सोए, शराब पी के सोए, या तो और रीति से भी और टेंशन में सोए तो सवेरे उठे तब भी फिर ये दिक्कत होती है। अगर फुल साइकिल को आप ठीक करो, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जो आपने निश्चित टाइम किया है तब उठ जाओ, और उठते ही फिर ये नहीं कि अभी और 5 मिनट के बाद अभी नींद आ रही है और अभी 10 मिनट के बाद, ऐसे नहीं। आपने टाइम डिसाइड किया तब बस, भल नींद आ रही है तो भी उठ जाओ, एक बार उठ के कुछ पैदल करने लगो, चलने लगो, ब्रश करने लगो। मैं तो सीधा स्नान करता हूँ, चाय भी नहीं पीता, उठे सीधे 1.5-2 ग्लास पानी पिया, बस सीधा ब्रश करने गए, तैयार होने लगे, शेविंग की, और देखो उतनी देर में फिर ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगता है। उस समय क्यों हमें थकावट रहती है, क्योंकि नींद में ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम होता है, और जब तक वो नॉर्मल ना हो आप में एनर्जी नहीं आती है। परंतु अगर इस प्रिंसिपल को अपनाओ कि तुरंत बस आप तैयार होने लगो।
0: लेकिन सुबह उठते तो अखबार चाहिए ही, मतलब कई बार तो लोग कहते हैं कि वो सोए हुए अखबार आती है, चाय आती है, उससे उठते हैं।
2: पूरी मतलब इट्स अ वर्स्ट थिंग, दोनों नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ बैड टी इज बैड,
0: बैड टी इज बैड,
2: इसीलिए तो बैड टी कहा ना उसको। तो चाय पीनी भी है तो नाश्ते के बाद पियो, उठते ही चाय नहीं पियो, क्योंकि चाय की जो हार्मफुल इफेक्ट है वही है कि इमीडिएटली वो इरिटेशन क्रिएट करती है, स्टमक में एसिडिटी क्रिएट करती है। तो इसलिए खाने के बाद थोड़ी सी चाय पिएंगे तो नुकसान नहीं होगा। और अखबार के नेगेटिव न्यूज है, बस एक आदत की बात है, 2 दिन आप करिए, बस उठते ही 1.5-2 ग्लास पानी पियो, पॉसिबल तो बस उसमें थोड़ा नींबू भी निचोड़ दो ताकि विटामिन सी आदि हम आपको मिलेंगे, और फिर तैयार होने जाओ। वो 1.5-2 घंटे में ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, स्नान आदि करके आप फ्रेश भी होंगे। फिर चाहिए तो भले आप एक्सरसाइज करो, थोड़ी सी चाय पीनी है तो पी लो, इस प्रकार से वह जो टाइम आपको मिल जाएगा और तब एनर्जी लेवल भी अच्छा होगा।
0: आपने कहा स्नान के बाद एक्सरसाइज करो,
2: नहीं अगर आपको करनी है तो थोड़ी सी सिंपल तो करो, भले अगर आप हैवी एक्सरसाइज करते तो भले पहले ही कर लो तब पसीना होगा। अगर नॉर्मल योगा आदि करते हैं कि जिसमें आपको पसीना नहीं होना है तो स्नान के बाद भी करो तो कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। मुख्य बात तो मेरी ये थी कि भी सवेरे थोड़ा जल्दी उठो और वह आपको 1.5-2 घंटे का जो टाइम मिलेगा वह पावरफुल टाइम होगा, तब डिफिकल्ट काम करो, अच्छे से सारे दिन का प्लानिंग करो। तो जो आपका शुरू में प्रॉब्लम था कि भी दिन छोटा पड़ गया है, वह दिन छोटा नहीं पड़ेगा आपका, 25-30% काम अर्ली मॉर्निंग में भी हो जाएगा, मेंटली भी आप अच्छे से प्रिपेयर्ड होंगे।
0: लिटरली देखें, ज्यादातर देखें सिस्टर शिवानी, जिंदगी में ऐसा हो रहा है कि सुबह उठे और टाइम हमारे पास कम है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ स्केड्यूल हमने रखा हुआ है जो हमें करना है, और उसके बाद ट्रैफिक जैम मिलेगा या कुछ मिलेगा, उसका मार्जिन रख के भी हमें घर से निकलना है। तो टाइम तो प्लानिंग का, हमें जीने का ही टाइम कम मिल रहा है, ये इसको कैसे हैंडल करें?
2: गलती तो वही है ना कि आप ये सोचते हो कि 45 मिनट्स में तैयार हो जाएंगे, आपको 7:30 को घर को निकलना है तो आप 7 बजे उठते हो, फिर तो हड़बड़ी होगी होगी। ये जो ब्रह्मा कुमारी इसकी लाइफ स्टाइल है कि आप थोड़ा जल्दी उठ जाओ तो आपके पास बहुत बड़ा टाइम मिलेगा। मेरा अपना अनुभव है कि हम जल्दी उठते हैं, जो मैंने बताया, तुरंत स्नान कर लेते, तैयार होते तो बहुत बड़ा टाइम होता है, 2.5-3 घंटे होते हैं।
0: लेकिन मैंने कहा ना कि वो जो हैवीनेस हो जाती है, क्योंकि एक आदत है कि आप 7 बजे उठते हैं तो तब आप फिर भी, क्योंकि आप रात इतना लेट सोए होते हैं और जो भी है, तो इस कारण वो सुबह उठने के बाद भी काफी हैवीनेस रहती है।
2: तो यहाँ पर बायोलॉजिकल क्लॉक का प्रॉब्लम है।
0: ओके,
2: आपने जो अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को ऐसे सेट किया है कि भी रात को 1:30 बजे सोना, सवेरे 7 बजे उठना, उसको बदलना होगा। वो एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन को भी वह सेटिंग हो गई है। क्या करिए, अगर अभी आप 1:30 बजे सोते हैं तो 5 दिन 1 बजे सोना शुरू करिए तो नींद आने लगेगी, क्योंकि थोड़ा सा ही फर्क है, ब्रेन उसको एडजस्ट हो जाएगा। और 5 दिन के बाद 12:30 बजे सोइए, और सप्ताह के बाद 12 बजे सोइए। ऐसे करते करते आप 10:30-11 पर भी आ सकते हैं, फिर सवेरे जल्दी उठना मुश्किल नहीं होगा।
0: तो पहले हम सोना जल्दी करें या उठना करें?
2: सोना जल्दी करो, थोड़ा आधा घंटा ही, 1/2 आवर ही आप जल्दी सो, भले उसी टाइम पर उठो, फिर और कम हुआ तो उठना जल्दी भी हो जाएगा, क्योंकि जो पीरियड है स्लीप का वो तो पूरा हो गया।
0: और एक जो मैंने अनुभव किया है, घर पहुंचते 10 बजे हैं, फिर क्या करें?
1: तो भी अपने, अब ये भी सोचना होगा हम 10 बजे क्यों घर पहुंच रहे हैं, हमें हर काम करने में आज ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातों पर हम अटेंशन नहीं रख रहे। आई विल हैव टू स्टॉप, reschedule everything, start all over again. हम सब जब meditation सीखना शुरू करते हैं, एंड कई बार हमने ये बात की है, राजयोग meditation is not 10 minutes or half an hour, राजयोग meditation is a lifestyle of 24 hours. तो जो परिवर्तन हमें एक तो attention रख के लाना है, कुछ धारणाओं को हर रोज फॉलो करना है, जैसे ही हर चीज पर फॉलो करते हैं, कितने बजे उठना, कितने बजे सोना, क्या भोजन खाना, सारा दिन में कैसे सोचना और मेडिटेशन करना, धीरे धीरे द होल साइकिल विल फॉल इनटू प्लेस। देखो, जब डिसहार्मनी होती है तो पूरे एस्पेक्ट पर डिसहार्मनी होती है, जैसे ही आप उसको हार्मोनाइज करना शुरू कर देते हैं पूरा दिन हार्मोनाइज हो जाएगा। एक चीज भी अगर हम शुरू करें कि मॉर्निंग उठकर मेडिटेशन करेंगे थोड़ी देर,
0: कभी भी उठो,
1: जल्दी थोड़ा, क्योंकि अगर लेट उठे तो फिर बैठने के लिए टाइम नहीं है। अभी तक हम क्या कहते हैं, टाइम होगा तो मेडिटेशन करेंगे। सी अगेन, हमने मेडिटेशन को अपने प्लानर में कहाँ डाल दिया कि अगर टाइम होगा तो मेडिटेशन करेंगे, तो टाइम तो कभी होता ही नहीं है। हमें अगर उसकी इक्वेशन को चेंज करें, मेडिटेशन करेंगे तो टाइम मैनेज होगा। सी, It's just the way I tune myself. It makes all the difference. If I say time hoga to meditation karenge, to wo to ho hi nahi raha. To wo hafte mein kabhi ek din time milega to karenge. Aur kyunki roz nahi karenge, to jab wo ek aadha din karenge, yog lagega nahi. Phir kahenge lagta nahi. Kya aadha ghanta nikal ke baithe laga bhi nahi. So then it goes out of the priority list. Main roz meditation karunga. इससे मेरा थॉट और टाइम मैनेज होगा। नाउ लेट मी एक्सपेरिमेंट करके कि मुझे रोज सुबह जल्दी उठना है, जो भी टाइम हम उठते हैं, क्योंकि इमिजिएटली शायद नहीं कर पाए, प्रेफरेबली जैसे हमने पहले भी शेयर किया कि 4:30 जो अमृत वेले का समय है, जब माइंड की एक्टिविटी, जब हम वो मेडिटेशन बहुत पावरफुली एक्सपीरियंस कर सकते हैं, थोड़े दिन उसको अभ्यास करके देखें। जब सुबह जल्दी उठते हैं ना, तो रात को अपने आप जल्दी नींद आती है, अपने आप आने ही है।
0: ये तो होता है कि जिस दिन आप सुबह होते,
1: तो अगर स्टार्ट करना है, मुश्किल हो रहा है, तो जस्ट स्टार्ट के कल से मुझे ये स्टार्ट करना है और वो मेडिटेशन मुझे प्रैक्टिस करना है। नहीं भी हो रहा, अभी हम नए हैं, फिर भी मुझे रोज करना है। कोई भी एक्सरसाइज जब हम शुरू करते हैं तो बहुत दर्द होता है पहली बार। अब जो हमारे अंदर अगर विल पावर नहीं है तो हम कहते हैं छोड़ो, एक्सरसाइज करने से दर्द होता है। एक्सरसाइज करने से तो दर्द नहीं होता ना कभी, लेकिन वो कुछ एक दिन हमें क्रॉस करना पड़ता है। सेम विद मेडिटेशन, थोड़े दिन हम कहेंगे उठते हैं नींद आती है, उठते हैं योग नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा, अभी हम स्लीपी हैं। फिर भी हम बैठेंगे, जो सारी तैयारी करके जैसे गिरीश भाई ने बताया, हम बैठेंगे लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि योग करेंगे और थॉट्स बहुत स्लो डाउन हो जाएंगी, सिंप्लीफाई हो जाएंगी, प्योरीफाई हो जाएंगे, मेरे सारा दिन की थॉट्स कैसे चलेंगे? सी, वो मेडिटेशन मतलब सिर्फ उतनी देर नहीं ना, आई एम ट्यूनिंग माई सेल्फ टू अनदर फ्रीक्वेंसी। सारा दिन थॉट्स कैसे हो जाएंगे? स्लो डाउन होंगे। रात को घर भी पहुंचेंगे, सोने का टाइम होगा, थॉट्स कैसे होंगे? स्लो होंगे। सोएंगे, अच्छी नींद आएगी, सुबह उठना इजी हो जाएगा। इट विल हैव टू स्टार्ट विद द मेडिटेटिव थिंग इन द मॉर्निंग, कि मेडिटेशन और ज्ञान, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन। हम लोग जब सभी पहली बार आते हैं, हम में से किसी को सुबह पहले 4 बजे उठने की नहीं आदत होती है। इट इज़ एन अनअर्थली टाइम, वी यूज टू थिंक 4 बजे कोई उठता है, ये कोई उठने का टाइम है, अभी तो रात लगती है बाहर। एवरीवन कम्स विद देयर ओल्ड लाइफस्टाइल, कोई 6 बजे 7 बजे, कोई तो 8-9 बजे उठने वाले लोग थे, लेकिन किया, परिवर्तन हुआ, प्राप्ति हुई। थोड़े दिन मुश्किल लगा, थोड़े दिन के बाद रह नहीं पाए उसके बिना, क्योंकि उसका वो आधा घंटा जो हम निकालते हैं वो आधा घंटा नहीं है, इट इज हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन माई एंटायर 24 आवर्स। अगर मैंने एक्सरसाइज के लिए टाइम निकाला तो पूरे दिन शरीर ठीक रहेगा ना, और पूरा दिन क्या, फिर हर रोज शरीर ठीक रहेगा। लेकिन कहें कि वो आधा घंटा नहीं है एक्सरसाइज के लिए, तो भी सारा दिन काम करेंगे लेकिन ड्रैग करते हुए, इस तरह से एनर्जेटिक। सो लेट्स बिगिन विद दैट मेडिटेशन, दिस हैज टू बी पुट ऑन टू माई प्रायोरिटी लिस्ट, कि ठीक है मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ विद दिस। हम सेंटर पर जाते हैं, मुरली स्टडी करते हैं, हु एवर थॉट दैट वी हैड टाइम फॉर दैट बिफोर। आज ब्रह्मा कुमारीज में जितने भी भाई बहने आते हैं, 9 लाख से ऊपर परिवार, परिवार है ना, उनका भी शॉप है, बिजनेस है, जॉब है, बच्चे हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड, हमारे पास इतने इतने बच्चे हैं, अगर उनका स्कूल जाने का टाइम 8 बजे का है, पहले वो 8 बजे तक तैयार होते थे ना, आज वो 7 बजे तक तैयार होकर सेंटर पर आते हैं मुरली क्लास के लिए। क्या प्राप्ति है उस छोटे से बच्चे को, 1 घंटा एक बच्चे के लिए जल्दी उठना। इट हैज़ टू बी एक्सपेरिमेंटेड, देन यू गेट द रिजल्ट, देन यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, फिर वो आपकी हार्मनी में लाइफ स्टाइल चलने शुरू हो जाएगी।
2: उसमें 3 बातें एक्चुअली, एक तो जो कहा कि प्रायोरिटी उसको दीजिए, कि मुझे जल्दी पहुंचने की प्रायोरिटी, अभी घर में आप पहुंचते हैं वो 10:30 बजे, तो मुझे 9 बजे तक घर पहुंचना ही है। उसके लिए दूसरा ये करना पड़ेगा कि किसी व्यक्ति को ना भी कहना पड़ेगा, लर्न टू से नो, कि भी मुझे पहुंचना है 9:30 तक, तब मेरी दिनचर्या ठीक होगी। और तीसरी बात, कहीं छोटा सा सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, बल बिजनेस थोड़ा सा कम चले कोई बात नहीं, और कोई एकाध काम आपका रात्रि का हुआ कोई बात नहीं, थोड़े दिन में करूंगा, फिर सवेरे तो और आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, उल्टा और आप एफिशिएंटली करेंगे। जैसे कहते हैं सक्सेस के लिए भी कहा है, डूइंग राइट थिंग एट अ राइट टाइम
1: इन द राइट वे,
2: राइट वे।
1: यू मे बी डूइंग थिंग्स बट नॉट इन द राइट वे एट द राइट टाइम,
0: एंड आई थिंक वी डोंट इवन नो, हमें पता ही नहीं है कि राइट क्या है, राइट और रॉन्ग को भी हमने इतना रिलेटिव कर लिया है।
1: इसीलिए तो मेहनत ज्यादा और रिजल्ट कम, और फिर बाकी जो सारे साइड इफेक्ट साथ में आ रहे, इट्स ओनली बिकॉज ईटिंग नॉट एट द राइट टाइम, स्लीपिंग नॉट एट द राइट टाइम, थिंकिंग नॉट इन द राइट वे। इस पूरी सीरीज में हमने देखा है कितनी सारी हम गलतियां करते आ रहे हैं, छोटी छोटी गलतियों को ठीक कर लें, टाइम वुड नॉट बी एन इश्यू, बिकॉज थॉट्स स्ट्रीमलाइन होते जा रहे हैं। हमारे सेंटर पर हैदराबाद में मिस्टर KVK राजू आते थे, He's left the body. He was chairman of Nagarjuna Fertilizers. Chairman है एक बहुत बड़ी industrial setup का। पहले तो कहते थे टाइम ही नहीं होता था, मेरे को तो 1:30-2 बजे तो सोने का टाइम मिलता है, और बहुत कम देर सोते थे। लेकिन जब मेडिटेशन का प्राप्ति समझ में आई तो उन्होंने 3:30-4 बजे उठना शुरू किया। जैसे गिरीश भाई ने कहा sacrifice, उन्होंने parties बंद कर दी, late night socializing बंद। चेयरमैन है ना, ये थोड़ी सोचा कि मेरी कंपनी में कोई लॉस हो जाएगा, नहीं, समझ में आया व्हाट इज गुड फॉर मी। उनके एक प्लांट में बहुत कुछ बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी काफी समय से, बिटवीन द लेबर एंड द टॉप मैनेजमेंट, मीटिंग्स डिस्कशंस, नो सोल्यूशन। एक दिन वो मॉर्निंग में उठे 3:30, ही वाज सिटिंग इन मेडिटेशन, देयर इज द आंसर। What the idea what he got in the early morning, he put it forward to his board of directors उस दिन मीटिंग में, everyone went unanimous, yes, ये इसी तरह होना चाहिए। जो उन्होंने उस दिन प्लान किया और इम्प्लीमेंट किया, उनको गवर्नमेंट के लेवल से उस चीज़ के लिए अवार्ड मिला था. एंड ही सेड कितने दिन मीटिंग्स मीटिंग्स डिस्कशंस एंड मॉर्निंग मेडिटेशन एंड मुझे आइडिया आया. द टाइम वेस्ट हो रहा था ना, लेकिन हमें लग रहा था ना हम बहुत बिजी हैं, डिस्कशन कर रहे हैं डिस्कशन कर रहे हैं. कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, डिस्कशन इज समटाइम्स वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी. हम सुपरफिशियल लेवल पर सोच रहे हैं, हम एंग्जाइटी में स्ट्रेस में सोच रहे हैं, कभी एक्यूरेट सोल्यूशन नहीं आएगा. लीव इट, इसके बारे में कल सोचेंगे. जब साइलेंस में होते हैं, जब हमारी एकदम ये एंग्जाइटी स्ट्रेस वाली थॉट्स बिल्कुल क्लियर एंड प्योरिटी की स्टेट में है, ऐसे सोल्यूशन आकर सामने खड़ा हो जाएगा. तो कितना टाइम बचा?
0: आपने कहा कि टाइम नहीं है इसलिए मेडिटेशन करते नहीं करते हैं. मेडिटेशन करेंगे तो आपका टाइम जो है आपके पास बहुत ज्यादा हो जाएगा, या टाइम आपका मैनेज हो जाएगा.
1: We find that के बहुत टाइम है, और बताओ और क्या काम करना है, जबकि वी डूइंग मच मोर देन जो पहले किया करते थे सारा दिन के अंदर. इट्स जस्ट दैट थॉट स्ट्रीमलाइन होती है ना, हर काम को कम टाइम लग रहा है.
0: How is that possible? अगर
1: अगर मैं काम कर रही हूँ प्रोजेक्ट पे और कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई फियर नहीं है, इनसिक्योरिटी नहीं है, ये होगा नहीं होगा, होगा नहीं हुआ, नहीं हुआ तो अगर उसका पहले ऑल दिस इज नॉट देयर, तो आपकी पूरी कॉन्सेंट्रेशन किस पर है? काम पर है. डेफिनेटली वो काम जल्दी होगा और गलतियों के बिना होगा. आपको डिसीशन लेना है, आपके माइंड में डाउट नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं है. डिसीशन लेने में कितना टाइम लगेगा? आप यहाँ वहाँ बैठकर इधर उधर की इसकी उसकी बातें नहीं कर रहे हैं, अंदर भी नहीं चल रहा, बाहर भी नहीं कर रहे, कितना टाइम बचेगा? यू कुड सेव लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, एंड सारा काम जल्दी जल्दी जल्दी होता जाएगा. यू विल से मोर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, सिर्फ काम नहीं होगा, इंजॉय करते हुए हल्के रहते हुए वो काम करेंगे, एंड जब शाम को घर आएंगे यू विल बी मोर और लेस जैसे आप सुबह गए थे. एटलीस्ट मेंटली, फिजिकली थक सकते हैं, लेकिन मेंटली यू आर स्टिल वेरी चार्ज्ड, क्योंकि माइंड वॉज स्टिल स्लो इवन इफ द बॉडी वॉज फास्ट. मुझे बहुत फास्ट फिजिकली काम करना हो सकता है, बट माई माइंड इफ इट इज स्लो, हम नहीं थकते हैं. आज हम फिजिकली स्टैटिक बैठे हैं, कंप्यूटर पे बैठे हैं तो बैठ ही गए घंटों घंटों, लेकिन माइंड कितना फास्ट है. तो आई हैव टू आस्क माई सेल्फ, कौन थका? एट द एंड ऑफ द डे थका कौन? शरीर ने तो बहुत ज्यादा कुछ किया ही नहीं, मन बहुत ज्यादा थका, और फिर रात को उसको स्लो डाउन नहीं किया, तो ये थके हुए मन को रात को सोने भी नहीं दिया, ये अभी भी रात को चल रहा था. तब जो आपने कहा कि सुबह उठेंगे तो सर दर्द हो रहा है, थके हुए मन के साथ उठे हैं, इट्स स्टिल लाइक वेरी हैवी ओवर हियर, फिर भी टाइम नहीं है, रेस्ट थोड़ी कर सकते, फिर इस थके हुए मन को लिया, फिर उस जर्नी पर चले. इमेजिन डेज एंड डेज, ईयर्स एंड ईयर्स हैव पास्ड लाइक दिस, व्हाट विल बी द रिजल्ट? दैट्स द ओनली रीजन व्हाई वी आर सफरिंग सो मच. जैसे इसको स्लो डाउन करेंगे हर चीज स्ट्रीमलाइन हो जाएगी.
2: मॉर्निंग में बहुत कुछ आपको मेरा अनुभव सुनाता हूँ. मुझे कई बार लिखना होता है, बुक्स लिख रहे हैं, देखा है कि अगर इवनिंग में लिखते हैं तो अगर एक पेज लिखने में आपको आधा घंटा लगा तो मॉर्निंग में वही 10 मिनट में लिख पाते हैं. इट मींस इट इज ऑलमोस्ट ट्रिपल. तो इसलिए भले थोड़ा जो तीनों पॉइंट्स मैंने बताई वो फॉलो करके सवेरे एटलीस्ट 1 घंटे का टाइम आप निकालो कि फ्रेश हो गए सब कुछ वो अपने लिए है. चाहे उसमें मेडिटेशन भी कर सकते हो, और सारे दिन का फॉरवर्ड प्लानिंग करना है वो फॉरवर्ड प्लानिंग करो, तो सारी समस्या समाप्त हो जाएगी.
0: एक मैं बात ये जानना चाहती हूँ, ये आपने कही बात कि फिजिकली, एक्चुअली सडनली आई रियलाइज कि हमने फिजिकली तो कुछ करते ही नहीं है. ज्यादातर लोग जो हैं वो फिजिकल बहुत एक्टिविटी नहीं करते हैं. बाय द एंड ऑफ द डे हमें इतनी ज्यादा थकान है कि हम कुछ भी शाम की वाइंडिंग अप भी नहीं कर पाते हैं. तो ये मेडिटेशन के बाद जो हम दिन की शुरुआत करते हैं उसमें और आज जो मैं जी जिंदगी जी रही हूँ उसमें क्या फर्क हो जाएगा?
1: क्योंकि थॉट प्रोसेस स्लो डाउन एंड एक्यूरेट होता जाएगा. सिर्फ पूरा हम समझते आ रहे हैं थॉट हर चीज कर रही है, थॉट का बॉडी पे इफेक्ट. आपने कहा बॉडी ज्यादा कुछ नहीं करती, फिर भी हम थका हुआ क्यों महसूस करते हैं? सारा दिन में हमने कितनी टॉक्सिक थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स कितनी क्रिएट की. गिरीश भाई ने बताया हर थॉट का बॉडी के हर सेल पे असर, हर थॉट का ब्रेन के हर केमिकल पर असर. तो इतनी टॉक्सिक नेगेटिव थॉट्स क्रिएट की होंगी तो ब्रेन पर और बॉडी पर कितना असर पड़ा होगा. किया कुछ भी नहीं था, गाड़ी में बैठे थे, गए थे, सारा दिन एसी ऑफिस में बैठे, वापस यहाँ क्या क्रिएट किया। वी एक्सपीरियंस के जब हम माइंड का ध्यान रखते हैं, हम फिजिकल बहुत एक्टिविटी भी अगर कर रहे हो तो भी माइंड लाइट है एंड राइट है तो फिजिकली भी एग्जॉशन है। आप अपने आप को एक हॉलीडे पे देखो, लुक एट योर सेल्फ ऑन अ पिकनिक, ठीक है। आप वॉक करते हैं, स्विम करते हैं, ड्राइव करके 2-3 घंटा दूर जाते हैं, वहाँ पे ट्रैक करते हैं, ये वो चीज़ें हैं जो आप अपने नॉर्मल डे पे कभी नहीं करते, राइट। फिजिकली आप बहुत एक्टिव हैं उस दिन, इनफैक्ट बहुत एग्जॉस्टेड हैं उस दिन, लेकिन आप मेंटली कैसे थे पिकनिक वाले दिन पर?
0: बहुत खुश थे।
1: तो घर आके भी कैसे लगेगा? और कुछ मूवी चलना है रात को? आई स्टिल हैव द एनर्जी। व्हाई? फिजिकली सब चीज टूट रही है, दर्द हो रहा है। माइंड, आई डिड नॉट क्रिएट एनी स्ट्रेस टुडे, मैंने आज किसी पर गुस्सा नहीं किया सारा दिन पे, देयर वाज नो फियर। माइंड ओवर मैटर। मन का नहीं ध्यान रखेंगे तो टाइम का भी ध्यान नहीं रख सकते, क्योंकि सब चीज क्रम्पल होने लग जाती है। तो मेडिटेशन हम मॉर्निंग में भी करते, और फिर जैसे हमने कई बार डिस्कस किया, हर एक घंटे के बाद 1 मिनट के लिए वो ट्रैफिक कंट्रोल, वो चार्जिंग, ताकि अगर कहीं भी गलती से फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी दूसरी तरफ जा रही थी, हमें फिर वो अटेंशन मिल जाता, हम रुक कर फिर राइट थॉट्स क्रिएट करना शुरू करते। हमने कितना डिटेल में डिस्कस किया राइट थिंकिंग, तो वो राइट थिंकिंग कई बार बीच बीच में चेक कर लेते हैं। पूरा दिन अच्छा अगर बीतेगा, बहुत अच्छी नींद रात को आएगी, अगले दिन सुबह अलार्म नहीं लगाना पड़ेगा, अपने आप आपकी नींद खुल जाएगी।
2: और एक बहुत बड़ी मदद मिलती है, और सब चीजों की तुमने चर्चा की है, परंतु सवेरे सवेरे आपने मेडिटेशन कर लिया तो परमात्मा की भी मदद मिलती है, जैसे वो हमें गाइडेंस दे रहे हैं, तो दैट इज अ ग्रेटेस्ट थिंग।
0: लेकिन मतलब अभी भी ज्यादातर लोगों के साथ ये बात है कि मेडिटेशन और मेरी डेली लाइफ में क्या

0: ट्रस्ट होंगे तो लोगों से डील करना बहुत इजी होगा। कई बार हम एंजाइटी में लोगों से डील करते हैं तो उल्टा गलतियां कर बैठते हैं। रिलैक्स्ड वे में करेंगे तो सही करेंगे। थोड़े डिटैच भी होंगे तो आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो सही होगा। अब देखिए, डिटैच होके कोई देखता हो तो वह चीज को सही दिखेगा। वैसे आप डिटैच होंगे तो आपका पर्सपेक्टिव सही हो जाएगा, अन्यथा आप अटैच होकर के कर रहे हैं तो आपका पर्सपेक्टिव भी गलत हो रहा है। इंट्यूशंस भी आपको मिलेंगे, जो इंट्यूशंस भी मदद करेंगे कार्य को सही करने में।
1: मेडिटेशन में जो सबसे पहली बेसिक जो हम एक्सपेरिमेंट करते आ रहे हैं, माय थॉट्स आर इन माय कंट्रोल, जैसे ये फंडामेंटल चीज़ पर मास्टरी आ जाती है, आपके इमोशंस पर मास्टरी आने लगी, आपने सारा दिन किसी पर गुस्सा नहीं किया, चिल्लाया नहीं, आपने लोगों को वो जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करना शुरू किया, तो आपने उनको कौन सी एनर्जी भेजी?
2: एक्सेप्टेंस के
1: जैसे आपने उनको वो वाली एनर्जी भेजी, आपको उनसे कौन सी एनर्जी मिली? से एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि हम क्यों भारी हो रहे हैं, हमें अपने आसपास के लोगों से कौन सी एनर्जी मिल रही है। आई मे बी द लीडर ऑफ माई कंपनी, लेकिन अगर मैं स्ट्रेस्ड हूँ और उस वजह से कई लोगों के ऊपर मैं गुस्सा कर रहा हूँ, या गुस्सा नहीं भी कर रहा, बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, बहुत फियर क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे उनसे फियर की एनर्जी मिलेगी, ये एनर्जी मुझे भारी करेगी, उनको तो करेगी करेगी। आई ऑलवेज फील कि एक लीडर के लिए एक जूनियर से ज़्यादा रिस्की है। हमें लगता है कि जो जूनियर्स हैं इनको डांट खानी पड़ती है, तो इनके लिए बहुत टफ है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, चेकअप वर्कर का नहीं होता, एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप होता है। डांट किसको खानी पड़ती है? ज़्यादातर वर्कर को खानी पड़ती है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये एग्जीक्यूटिव को क्यों हो रहा है? क्योंकि एक एग्जीक्यूटिव कम से कम 10, 20, 100, 1000 वर्कर्स के लिए जिम्मेवार है। मैं एक को अगर डांटती हूँ, उसको तो एक ही बार डांट मिलती है, मैं 10 को डांटती हूँ, मुझे कितनी बार नेगेटिव एनर्जी मिलती है? 20 टाइम्स, 10 टाइम्स व्हेन आई गेव इट एंड 10 टाइम्स व्हेन दे गिव इट बैक टू मी। तो मेरी तबीयत पर तो असर पड़ना ही है। अगर मैंने बचा लिया अपने आप को इन चीज़ों से, और उल्टा अगर मैंने 10 टाइम्स प्यार और एक्सेप्टेंस की एनर्जी भेजी, तो मुझे 20 टाइम्स कौन सी एनर्जी मिलेगी? हाउ विल आई फील बाय द एंड ऑफ द डे? मेरे को लगेगा जितना पहले था उससे भी ज्यादा लेकर मैं शाम को घर पर
2: इनफैक्ट इट्स अ बिग टेस्ट। आप जैसा फील कर रहे हैं शाम तक जाते जाते, ये आपको बताएगा कि आपके दिन भर की स्थिति, आपने क्या क्या दिया है।
1: बिल्कुल, इट इज एब्सोल्युटली अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट, और कुछ भी नहीं है, इट्स अ रिफ्लेक्शन। मैंने आज सारा दिन कौन सी एनर्जी क्रिएट की, कौन सी एनर्जी गिव की, और फिर औरों से मुझे एनर्जी मिली, शाम को एक्सरे आपको पता चलेगा। यू नो एग्जैक्टली वेयर यू हैव मेड अ मिस्टेक। एटलीस्ट नाउ डोंट वेस्ट टाइम इन ब्लेमिंग अदर पीपल, लेट मी जस्ट चेंज व्हाट आई गिव फ्रॉम टुमारो। हर स्टेप पर चेंज आएगा, बहुत अच्छा सारा दिन बीतेगा, एंड यू विल एंजॉय योर वर्क, मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दैट।
2: यस, वेरी ट्रू। इनफैक्ट आई विल एंजॉय द डे, यू नो, जो पूरा दिन, इतना सुंदर दिन मेरे लिए दिया है, उसको मैं एंजॉय तो कर पाऊंगी। सिस्टर शिवानी, डॉक्टर पटेल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शांति।
2: सचमुच देखने की बात है, बार बार हम कितनी बार फिल्म में या किसी किताब में, कविता में सुनते थे, पढ़ते थे कि जिंदगी एक बहुत खूबसूरत एहसास है। एहसास क्या हो रहे हैं हमें? आज हम जिंदगी जीना ही नहीं चाहते क्योंकि इतना थका हुआ महसूस करते हैं। आज जो इतना बड़ा टेस्ट हमारे सामने आया है, हम शाम को कैसा महसूस कर रहे हैं? अगर थके हुए हैं, अगर दुखी हैं, अगर परेशान हैं, गुस्से में हैं, इसका मतलब दिन भर में यही चीज़ें ना सिर्फ मैंने दी हैं बल्कि रिसीव की हैं। जब मैंने जितनी बार मैंने दी उससे डबल टाइम मैंने मुझे मिली है, क्योंकि उतनी बार मैंने दी थी और फिर उन्हीं लोगों से मुझे वापस मिली। अब देखना ये ज़रूरी है कि मैं क्या चाहती हूँ, कैसा महसूस करना चाहती हूँ। और मैं हमेशा अपने आप को कहती हूँ कि मैंने तो दिन भर अच्छा रही थी, लेकिन अगर शाम को मैं थकी हुई हूँ, इतनी भारी हूँ, तो इसका मतलब ये मेरे द्वारा क्रिएट की गई है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, टाइम को मैनेज करने के लिए जो अभी तक हमने इतने तरीके किए थे, एक जो आज मैं सूत्र पकड़ कर जा सकते हैं हम लोग, कि सुबह अपनी अपने हाथ में कर लें। जैसे अभी तक सोच को अपने हाथ में किया था, सुबह उठने को अपने हाथ में कर लें। एक बार मन को ये तैयार कर दें, समझा दें, बाकी सारी चीज़ें उठते ही मेडिटेशन को अपना, अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें, बाकी सारी चीज़ें विल फॉल इन प्लेस। ये अनुभव बता रहा है और देखते हैं, हम प्रयास करते हैं, पता चलेगा कि हमारा अनुभव क्या कहता है। आज अवेकनिंग विद बाबा कुमार इसमें इतना ही, फिर मिलेंगे। ओम शांति।

0: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित एवं कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी,
1: एपिसोड 2, स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम और अब तक हुई प्रगति की झलक।
0: दोस्तों लीजिए, फिर आ गए हैं वही दिन वही बार जिसका हम बेसब्री से करते हैं इंतजार।
1: आप सभी को स्वच्छिका और सुजल का सादर नमस्कार।
0: क्या है कि स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी कार्यक्रम देता है हमको शुद्ध विचार। हर तरफ, हर कोना, हर गांव में हो रहा है स्वच्छता का प्रचार।
1: दोहराना है हमें ये संकल्प और ये व्यवहार कि स्वच्छता ही है हम सबका अधिकार।
0: रखना है स्वच्छ हर घर का शौचालय इस बार। धोएंगे साबुन से हाथ खाने के पहले और शौच के बाद।
1: करेंगे सफाई से प्यार, करेंगे सबसे स्वच्छता की गुहार।
0: केवल मनोरंजन ही नहीं, उद्देश्य है हमारा।
1: बैठ जाए हर मस्तिष्क में यह संकल्प कि स्वच्छता ही है एकमात्र विकल्प।
0: स्वस्थ तन और स्वस्थ मन में ही वास करते हैं सुविचार।
1: प्रण करें आज ही कि स्वच्छ सुजल करना है हमें हर गांव।
0: दूर हो जाएगी बीमारी अगर स्वच्छता की होगी वातावरण में बहार।
1: दूषिका भी भाग जाएगी अगर होगी आपके आसपास ऐसी बयार।
0: यही है स्वच्छ सुजल गांव अभियान की पुकार।
1: साथियों, इन सब के सहारे ही होगी हमारी नैया पार। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की पूरी जानकारी देंगे, विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों की कहानियां सुनाएंगे और साथ ही आपको ये बताएंगे कि कैसे इस योजना का उद्देश्य फेज 1 में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और शौचालय की सुविधा प्रदान करके डेफिकेशन फ्री ODF भारत बनाना था और फेज 2 में हर गांव को ODF प्लस मॉडल बनाना है। इस मिशन के तहत शौचालय निर्माण और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधक तकनीक को स्थापित कर स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने तथा लोगों में व्यवहार परिवर्तन लाने पर जोर दिया जाता है।
0: स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के पहले चरण में सरकार ने हर गांव के हर घर में शौचालय बनाने का संकल्प लिया था और स्वच्छिका तुमको याद है? देश के सभी गांवों ने स्वयं को ODF घोषित किया था। अब यह ना कह देना कि ODF गांव क्या होता है।
1: अरे रे रे, ऐसे कैसे कह दूंगी, मुझे मालूम है। ODF मतलब खुले में शौच मुक्त गांव, ओपन डेफिकेशन फ्री है। ये एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग उन क्षेत्रों में वर्णन करने के लिए किया जाता है जहां लोग अब खुले में शौच नहीं करते हैं बल्कि शौचालय का उपयोग करते हैं। ये हम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत सुनिश्चित करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण पहल है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और वहां की महिलाओं की निजता और गरिमा सुनिश्चित करते हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाते हैं। सही बताया ना?
0: बिल्कुल। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण में हमारे गांव ODF प्लस मॉडल की ओर बढ़ रहे हैं। एक ODF प्लस मॉडल गांव वह होता है जो खुले में शौच से मुक्त हो चुका है, ठोस एवं तरल कचरे का समुचित प्रबंधन कर रहा है तथा जहां स्वच्छता का स्तर उच्च हो और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा एवं जल का जमाव ना हो।
1: इसमें ये सुनिश्चित करना है कि गांव के सभी घरों के साथ साथ प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर और आंगनवाड़ी केंद्र में शौचालय की सुविधा हो और सभी सार्वजनिक स्थानों और घरों में ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रभावी प्रबंधन हो।
0: लेकिन सरकार के साथ साथ इसके लिए समुदाय की भागीदारी भी बहुत जरूरी है। हमारी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है रेडियो के माध्यम से और आप लोगों को यह देखना जरूरी है कि इस मुहिम में कोई भी परिवार छूटे नहीं।
1: अच्छा, ये लेकिन मुझे ये पता है कि अब तक 5.1 लाख से ज्यादा गांवों स्वयं को ODF प्लस मॉडल घोषित कर चुके हैं। इसके साथ 5.50 लाख से अधिक गांव में गंदला जल प्रबंधन और 5.5 32 लाख से अधिक गांव ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कर चुके हैं।
0: देश में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए सरकार के प्रयास जारी है। हर गांव को साफ बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना और हर घर में स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन योजना शुरू की गई है और हमारी आपकी सहभागिता इस महाअभियान में बनाकर रखना भी बहुत जरूरी है। तो सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो मन भवन, और उसमें सुनते रहिए ये कार्यक्रम
1: स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी, जहां हर घर तक पहुंचेगी हमारी आवाज, हमारी बात। लेकिन फिलहाल इन सारी बातों को विस्तार से बताने के लिए हमारे बीच विशेषज्ञ उपस्थित हो चुकी है। चलिए पहले सुनते हैं उनकी बात।
2: नमस्कार साथियों, मैं ऐश्वर्या सिंह, संयुक्त सचिव एवं मिशन डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से बोल रही हूँ। आज आप सभी से स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी कार्यक्रम के जरिए जुड़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज हम बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की, स्वच्छ सुजल गांव की, और हम इन दोनों विषयों में कैसे एक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से जब स्वच्छता और खुले में शौच का विषय उठाया था तो यह अपने आप में अभूतपूर्व था। उनके मार्गदर्शन में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई और हम सब ने मिलकर अपने देश के हर गांव को खुले में शौच से मुक्त यानी ODF बनाने का जिम्मा उठाया। आने वाले वर्षों में यह मिशन और स्वच्छता का विषय एक जन आंदोलन बना और हमें इसमें आप सभी का पूर्ण सहयोग मिला। इस दौरान देश में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ और महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर 2019 में हमने खुद को ODF घोषित किया। इस अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि और इसकी नींव थी लोगों में आया व्यावहारिक परिवर्तन या बिहेवियरल चेंज। घरों, पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों, युवाओं, बच्चों, सभी में स्वच्छता के लिए जागरूकता बढ़ी और सभी ने इसको अपनी जीवन शैली का एक अंग बनाया। लेकिन हम केवल ODF पर नहीं रुके। 2020 से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण यानी फेज 2 पर काम शुरू हुआ। इसमें लक्ष्य था ODF से आगे ODF प्लस की ओर बढ़ना, अपने गांवों को ODF प्लस मॉडल गांव बनाना।
3: ODF प्लस मॉडल गांव का अर्थ है कि गांव न केवल खुले में शौच से मुक्त हो बल्कि वहां का कचरा, गंदा पानी और प्लास्टिक अपशिष्ट या प्लास्टिक वेस्ट का भी सही तरीके से निपटान किया जा रहा हो। मतलब इसके तहत सरकार ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन यानी सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर भी जोर दे रही है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस दूसरे चरण में 31 मार्च 2026 तक हमारे 5 लाख से भी ज्यादा गांव ODF प्लस मॉडल घोषित किए जा चुके हैं और यह काम आप सभी के राज्यों में अभी भी जोर शोर से जारी है।
2: ऐसे ही स्वच्छ सुजल गांव एक ऐसा गांव होता है जहां साफ पेयजल की व्यवस्था हो और हर परिवार के पास बेहतर स्वच्छता की भी सुविधा हो, यानी वह एक ODF प्लस मॉडल गांव भी घोषित किया जा चुका हो। साथियों, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण केवल एक सरकारी योजना नहीं, यह एक जन आंदोलन है जिसमें सरकार के साथ साथ आप सभी की जन भागीदारी बहुत आवश्यक है। इस अभियान के अंतर्गत बन रही सुविधाओं, शौचालयों, कचरा प्रबंधन के केंद्र, प्लास्टिक वेस्ट यूनिट इत्यादि के रख रखाव और इनको सुचारू रूप से चलाने में राज्यों, जिलों, गांवों की हम सबकी अहम भूमिका है। इस भूमिका को भी आप सभी को पूरे मन से निभाना है। और हाँ, आपसे अनुरोध है कि अपने गांव, ब्लॉक, जिले के बच्चों को, युवाओं को भी स्वच्छता के विषय के प्रति जागरूक बनाएं, उनको इस अभियान के अंतर्गत बनी व्यवस्थाएं दिखाएं, जिससे भविष्य में वे भी आगे बढ़कर स्वच्छता का दीप प्रज्वलित रखें। तो आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें, हम राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना से हर काम करेंगे। हम स्वच्छ भारत विकसित भारत के लक्ष्य में अपना भरपूर सहयोग करेंगे। ना हम कचरा फैलाएंगे, ना दूसरों को फैलाने देंगे। हम अपने गांव को ODF प्लस मॉडल गांव बनाएंगे और जो गांव ODF प्लस मॉडल बन चुके हैं उनकी व्यवस्थाओं को सुचारू रखने में सहयोग देंगे। इसी संदेश के साथ मैं ऐश्वर्या सिंह आपसे विदा लेती हूँ। स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और जुड़े रहिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के इस जन आंदोलन से। धन्यवाद। जय हिंद।
0: हमारी विशेषज्ञ ऐश्वर्या सिंह संयुक्त सचिव एवं मिशन डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय ने कितने अच्छे से यह सारी बातें आप लोगों तक पहुंचाई। याद रखना है आपको और ये आपके क्षेत्र में कार्यान्वित हो इसके लिए आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है।
1: और एक मजे की बात बताऊं सुजल, देश भर के 100 सामुदायिक रेडियो के माध्यम से इस कार्यक्रम का पहला एपिसोड ही सुनने के बाद मैं स्वच्छिका और तुम सुजल साथ में दुशिका भी बहुत फेमस हो चुके हैं।
0: अच्छा, कैसे?
1: अलग अलग गांव में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमारे चरित्र को प्रस्तुत किया जा रहा है।
0: अच्छा, कहाँ?
1: चलो तुमको रामदेववाड़ी गांव की कहानी सुनाती हूँ। वहाँ पर नुक्कड़ नाटक के रूप में क्या प्रस्तुत हो रहा है वो सुनवाती हूँ। वहाँ पर एक नाटक हो रहा है जिसका नाम है दूषिका की हार, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की जीत।

कहते हैं जब बुराई बढ़ती है तो अच्छाई भी ताकत से खड़ी होती है। ये कहानी है रामदेवाड़ी गांव की, जहां स्वच्छता को गंदगी ने खुली चुनौती दी, जहां दूषिका ने फैलाया अंधेरा और स्वच्छिका ने जलाया स्वच्छता का दीपक, और सुजल कुमार बना उस रोशनी का स्वच्छता दूत। जानेंगे कैसे काम आई बुजुर्ग की नसीहत। आइए सुनते हैं दूषिका की हार, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की जीत।

0: आ गई बे दूषिका, गांव की नालियों और कूड़े में ढेर से निकाल कर कभी निष्क्रिय शौचालयों में, कभी गंदे घरों में मेरा साम्राज्य बढ़ता ही जा रहा है। जहां शौचालय बनते हैं, बनते तो है मगर लापरवाही करने से निष्क्रिय हो जाते हैं, वही तो बसती हूं मैं। जो कहते हैं कल करेंगे साफ, उनको जल्द से जल्द मैं कर देती हूँ बीमार। गंदा और निष्क्रिय शौचालय मेरा आशियाना, फैला हुआ गंदा पानी और टूटा नल मेरा ठिकाना, मेरा काम सबको बीमार बनाना।
1: घर में शौचालय तो है पर नल की टोटी खराब हुई है। कितनी बार रमेश के पिताजी को कहा बनवा दे लेकिन सुनते ही नहीं है। शौचालय ना हो पर तो क्या हमें फिर से खेती में जाएंगे? नहीं नहीं, हमारा गांव तो ODF है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
0: ये है मेरी एक और जीत।
2: हमारे कुछ शौचालय निष्क्रिय है और वे लोग उनको ठीक नहीं करवा रहे हैं। इस वजह से भी शायद पिछले महीने 4 बच्चे बीमार पड़े थे। सरपंच जी कुछ कीजिए।
3: गांव वाले गांव में गंदगी भी फैला रहे हैं और गांव में लगाना कूड़ेदान का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।
4: घर में जगह होने के बाद भी घरों के गंदे पानी से गांव में जल भराव कर रहे हैं।
0: बस ऐसे ही रहो, मुझे तुम सबका लापरवाह रवैया बहुत पसंद है। तुम खुद शौचालय साफ नहीं रखते, उनके रखरखाव का ध्यान नहीं रखते और गांव में कूड़ा इधर उधर फेंकते हो, कूड़ादान का भी प्रयोग नहीं करते।
2: एक दिन गांव एक युवा आत्मविश्वास से भरपूर आंखों में एक भारत के निर्माण का सपना लिए सुजल कुमार अपने पड़ोस के गांव जाता है।
3: राम राम भैया, ये गांव में चारों ओर सन्नाटा क्यों है भाई? सब इतने दुखी क्यों हैं और इतनी गंदगी क्यों है भाई?
4: कौन है जी, कौन है पता नहीं। हाँ कौन है पता नहीं, मुझे क्या पता कौन बोल रहा है। लगता है जैसे इनको तो कुछ पता ही नहीं। हाँ नहीं तो सच कह रही हो बहन, बन तो ऐसे रहा है जैसे इसको तो कुछ पता ही नहीं है।
3: सब समझ गया चाची, सब समझ गया मैं। इस गांव में ये दुख और सन्नाटे का कारण है अस्वच्छता।
0: मैं हूँ इन सब का कारण, बोलो क्या करोगे तुम? बोलो बोलो। हाँ कुछ नहीं कर पाओगे तुम, कुछ दिन में तो तुम्हें भी अपना शिकार बना लूंगी समझे।
3: अच्छा तो तुम हो दूषिका और ये सब तुम्हारी किया धरा है। अब मैं सब समझ गया, देखो मैं कुछ ही दिनों में तुम्हारा कैसे सफाया करता हूँ।
0: मेरा सफाया? मेरा सफाया क्यों करोगे? मैं तो उन गांव वालों को निशाना बनाती हूँ जो गंदगी फैलाते हैं, जो अपने शौचालयों का रखरखाव नहीं रखते, गीले कचरे सूखे कचरे के बीच अंतर नहीं जानते, जो ये भी नहीं जानते कि जैविक कचरा यानी घर की रसोई से निकलने वाले कचरे को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। ऐसे सभी लोग पर मैं राज करती हूँ, उनका यही लापरवाही मेरी जीत है। लेकिन जनता को स्वच्छता के बारे में समझाने का काम तो तुम्हारा है सुजल।
3: दूषिका तुम गलत हो, यह काम अभी भी हो रहे हैं और हमारे गांव की जनता को समझा है। वह स्वच्छता को कायम रखने के लिए शौचालय के रखरखाव, गांव की स्वच्छता के लिए गीले सूखे कचरे के लिए अलग अलग डस्टबिन का उपयोग कर रहे हैं। इसके लिए सरकार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत जागरूकता अभियान भी समय समय कराती ही रहती है। समझी प्रदूषिका?
0: हाँ हाँ हाँ, समय के साथ जनता जागरूक होती जा रही है, लेकिन गंदा पानी तथा मलीय कचरा प्रबंधन को व्यापक रूप से अपनाने में अभी काफी समय लगेगा।
4: दूषिका, गंदा जल प्रबंधन और गलीय कचरा प्रबंधन भी सभी गांव में विभिन्न माध्यम जैसे सोखता गड्ढा घर और सामुदायिक स्तर पर वेस्ट स्टेबिलाईजेशन पॉन्ड, डीवैट्स और फेकल स्लश ट्रीटमेंट प्लांट जैसे संरचनाओं से की जा रही है। इसके बारे में विस्तार से बताऊंगी। देखना आने वाले दिनों में गांव की जनता कैसे तुम्हारा नामो निशान मिटा देगी।
1: सुजल और वे स्वच्छता पर नुक्कड़ नाटक करता है, बच्चों को खेल खेल में सिखाता है, बूढ़ों से मिलता समझाता है। शौचालय सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, ये हमारी माताओं बहनों बेटियों की गरिमा है। यह हमें बीमारी से अस्वच्छता से बचाता है। ये है बीमारी से लड़ने का हथियार। अपने घरों के शौचालयों का रखरखाव और उनकी सफाई करना, मरम्मत करना घर वालों की जिम्मेदारी है। गांव को स्वच्छ रखने के लिए सही कचरा प्रबंधन और गंदला जल का निपटान भी हमारी सामूहिक जिम्मेवारी है। खुद भी स्वस्थ रहो और दूसरों को भी स्वच्छ रहने के लिए स्वच्छता के प्रति जागरूक करो। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग प्रेरित होते हैं और शौचालय की नियमित सफाई शुरू करते हैं और गांव के लोग एकजुट होके सामुदायिक शौचालयों का भी रखरखाव शुरू करते हैं। इसी के साथ सुजल उनको सूखा कचरा प्रबंधन और गंदला जल प्रबंधन का अच्छा प्रभाव भी दिखाता है, जैसा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में सिखाया गया था। लोग इस दिशा में काम करने लगे। दूषिका बेचैन होती है, गांव की गली में छिपकर देखती है।
0: अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? लोगों ने नालियां साफ कर दी है क्या? ये शौचालय का नल भी ठीक हो गया? दुर्गंध कहाँ गई? मच्छर कहाँ गए? गंदला जल नहीं फैला? अरे अरे अरे अरे, ये गांव में सब ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है?
1: अब गांव में आती है उजली सी रोशनी के साथ स्वच्छिका।
4: गांववासियों, तुम्हारी जागरूकता ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, जहाँ शौचालय का निरंतर उपयोग और सही तरीके से रखरखाव होता है, जहाँ जैविक सूखे और प्लास्टिक कचरे का सही प्रबंधन होता है, वही रहती हूँ मैं स्वच्छिका।
1: अब गांव में हर घर हर गली में स्वच्छता का जन आंदोलन फिर से खड़ा हुआ है।

0: अब हम चलते हैं अपने उस सेगमेंट की ओर जहां पर श्रोता साथियों के नाम होते हैं, प्रश्न हमारे उनके जवाब होते हैं। तो पिछले एपिसोड में यानी एपिसोड नंबर 1 में हमने स्वच्छ गांव के लिए कोई बढ़िया सा स्लोगन हमने भेजने को तो कहा था।
1: तो क्या कुछ अच्छे स्लोगन आए हैं?
0: बिल्कुल आए हैं स्वच्छिका, और उसमें से हमने 3 अच्छे स्लोगन छाट भी लिए हैं। सुनते हैं उन श्रोता के नाम और उनके भेजे गए स्लोगन। करण पाटिल, जो कि जलगांव के ग्रामीण भाग से है, उन्होंने पहला उनका स्लोगन है स्वच्छ गांव स्वच्छ जीवन, यही है खुशहाली का सच्चा कारण।
1: वाह वाह।
0: और दूसरा जो स्लोगन है वो भेजा है प्राजक्ता बहिरम ने, और वो अमल ने ऐसे लिखती है, और स्लोगन है घर घर का हो एक ही नारा, स्वच्छ और सुंदर हो गांव हमारा।
1: क्या बात है।
0: और तीसरा स्लोगन है जो कि है ग्रीष्मा पाठक नशीराबाद से, उन्होंने भेजा है कचरा डिब्बे में डाले सभी, स्वच्छ गांव की जिम्मेदारी निभाए सभी।
1: क्या बात है, बहुत ही अच्छे। वाह, ये तो बड़ा अच्छे अच्छे स्लोगन लिखकर भेजे हैं। हमारे श्रोताओं को बधाई और धन्यवाद।
0: और अब इस अंक का सवाल, गीला कचरा और सूखा कचरा की श्रेणी में किन किन चीजों को रखा जाता है, और उन्हें रखने के लिए किस रंग के कूड़ेदान होते हैं?
1: तो भेजिए जल्दी से जवाब। सही जवाब भेजने वालों के नाम शामिल होंगे अगले अंक में। हमारा नंबर है 9284994433।
0: चलने का वक्त हो गया है, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ और भी बताएंगे, और वह आप जानते हैं कि हम आपको क्या बताएंगे। आज आप सुन रहे हैं स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड। आज के इस एपिसोड में हमने चर्चा की है कि हम अपने शौचालय का रखरखाव और उसकी साफ सफाई कैसे रखेंगे, ठोस और तरल अपरिष्ट प्रबंधन क्यों जरूरी है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रम और अब तक हुई प्रगति की झलक।
1: और अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे हर घर जल कार्यक्रम और अब तक हुई प्रगति की झलक के संदर्भ में जानकारी।
0: क्या आप जानते हैं कि जल जीवन मिशन में जल उत्सव या जल अर्पण दिवस क्या होता है? इस जानकारी के साथ ही जल जीवन मिशन के जारी होने से पहले लॉन्च और अब तक के कवरेज सहित मिशन के बारे में, नल जल कलेक्शन की उपलब्धियां, जल परीक्षण में महिलाओं की भूमिका, मिशन के घटक आदि के बारे में अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे।
1: अब आप अपने प्रश्न का जवाब हमको भेजिए। अपने गांव में शौचालय के रखरखाव पर के प्रति नजर रखिए, लोगों को बताइए खुश रहिए स्वच्छ रहिए, प्लास्टिक के थैले को उपयोग न करें, यत्र तत्र कूड़ा न फेंके, कूड़ा कूड़ेदान में डाले, स्वच्छता फैलाइए और अपने देश को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ भारत सुंदर भारत
0: कार्यक्रम के अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे आपसे। तब तक सुनते रहिए आपका अपना पसंदीदा रेडियो, रेडियो मनभावन 90.8 FM। फिलहाल स्वच्छिका और सुजल को अनुमति दीजिए।
1: नमस्कार।